हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई 2026 प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्री

का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर OFC कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

साथियों सुनिए आज का चिंतन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए वंदन वार में भक्ति रचना।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। इसका भाग 236 प्रसारित किया जाएगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका का भाग एक। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह है, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2:00। आज त्रिवेणी में आलेख एवं स्वर है ममता सिंह का। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और शाम को 8:15 पर। आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख

स्वर अशोक सोनावले का है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो आज प्रसारित होगा। संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11:00, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर बाद 2:30 पर। 3:00 सुनिएगा सखी सहेली के अंतर्गत कुछ इन विषयों पर बातचीत। पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे टसर या घीचा सिल्क साड़ी, झारखंड की मशहूर। शब्द हमारे, विचार आपके में सुनिएगा प्रतियोगिता के बारे में और व्यंजन पकौड़े के बारे में बातचीत होगी। संवादक मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक। छाया गीत शाम 5:00, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर आप फिर से सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7:00। 7:45 पर आज इंद्रधनुष में राग अनुराग। 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका के अंतर्गत झलकी दीवा स्वप्न। मनु भाई देसाई का लेखन है, निर्देशक सत्येंद्र शरत। कार्यक्रम आपके लिए रात 9:00। 10:00 छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 236 आप सुनेंगे।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

नमस्कार श्रोताओं, भारतीय संगीत परंपरा में यदि किसी वाद्य को प्रकृति की सहजता, मानवीय संवेदनाओं की कोमलता और आत्मा की गहनतम अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है तो वो है बांसुरी। बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अनंत धारा का मधुर स्वर है, श्वास का संगीत है। ये प्रकृति की निस्तब्धता को भी मधुर अभिव्यक्ति दे देती है। इसकी ध्वनि में कभी यमुना के तट पर गूंजती कृष्ण की दिव्य लीला का आह्वान सुनाई देता है तो कभी वन उपवनों में बहती समीर की मृदुल सरगम। बांसुरी की तान मानव हृदय के उन भावों को भी अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव नहीं होता। इसकी ध्वनि में मिट्टी की सोंधी सुगंध और जनमानस की सरल भावनाएं समाहित रहती हैं। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

जागृत कलाकार हैं, अपनी विलक्षण साधना और अद्भुत प्रस्तुति शैली के माध्यम से बांसुरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। बांसुरी की तान जब छिड़ती है तो हम जैसे सुर सरिता में अवगाहन करते हैं, मन दीन दुनिया से बेखबर होकर साधना में लीन हो जाता है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनका पूरा नाम रणेंद्र भानु मजूमदार है, आप भारतीय संगीत जगत के ऐसे अनुपम साधक हैं जिन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर तान से शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत तीनों धाराओं को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया है। उनकी बांसुरी से निकलने वाले स्वर मानव प्रकृति की शांत सरिता की तरह हृदय को स्पर्श करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीरता और आध्यात्मिकता को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने बांसुरी की दुनिया में कई नए प्रयोग किए, एक नई दिशा दी। फिल्म संगीत में भी पंडित रोनू मजूमदार ने बांसुरी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना दिया। उनकी धुनों में कहीं प्रेम की कोमलता है तो कहीं लोक जीवन की मिट्टी की सोंधी सुगंध। लोक संगीत में उनकी बांसुरी भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा को जीवंत कर देती है। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की सुरीली कड़ियां पिरोने के लिए हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जी को, जो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित जी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कुमार गंधर्व पुरस्कार के अलावा अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से ये सिद्ध किया है कि बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि आत्मा और संवेदना की मधुर अभिव्यक्ति है। पंडित जी के साथ तबले पर हैं अजीत पाठक जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं, और बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला और हम स्वागत कर रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार जी का। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। कुछ बातचीत, कुछ संगीत की चर्चा तो होगी ही
0: जी। और अब हम अजीत जी का स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अजीत जी, स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: और अब बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। कल्पेश जी, नमस्कार, स्वागत।
3: जी नमस्कार।
0: तो अब हम शुरू करते हैं। रोनूदा, आप ये बताइए कि आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बांसुरी का खजाना खोलेंगे तो सबसे पहले खजाने से कौन से मोती निकालेंगे? हमें तो आपकी ही बांसुरी का वो गाना याद आ रहा है, खाली हाथ शाम आई है, इजाजत फिल्म का गाना, जिस पर आपकी बड़ी सुरीली तान सुनाई पड़ती है, आप क्या कहेंगे?
1: ये एक ऐसा गाना पंचमदा आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। उसके पहले भी मैंने आशा जी के साथ बहुत गाने बजाए, मगर इस गाने ने मेरी उनसे दोस्ती करवा दी।
0: जी जी,
1: मतलब वो मेरी माँ भी थी और दोस्त भी थी, मन की बातें मुझसे साझा करती थी, सुख दुख की हर बातें मेरे साथ करती थी
0: जी।
1: और जैसे ही मैंने बजाया, वो सिंगर बूथ उस जमाने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो आज की तरह नहीं कि वो जमाना अलग था। वो फिल्म सेंटर का बहुत बड़ा एक हॉल, कोई जैसे कि मैरिज का हॉल हो, इतने बड़े हॉल में 150 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, ऐसा माहौल था
0: जी।
1: तो सिंगर बूथ से निकली और सबसे पहले मेरे पास आई, तो पहले वो उन्होंने पूछा कि अरे तुम क्लासिकल आर्टिस्ट हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो अपने गुरुओं का नाम मैंने बताया, बोली कि सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगी कि जैसे मैं मुखड़ा गा रही थी, जितनी वैरायटी विविधता मैं कर रही थी, उससे अलग हटके तुमने कैसे सोचा? मैंने तो सारी वैरायटी, मुझे लगा कि मैंने गा दिया, मैंने भी जो एक भाव शुरू से वैसा ही था
0: जी जी,
1: एक फक्कड़पना शुरू से था। मैंने कहा दीदी ये तो सागर है, इसका था कहां से मिलेगा, ये तो जितना डूबेंगे उतना और गहराई मिलेगा। बोली बहुत अच्छा, तुम घर आओ। तो उसके बाद प्रभु कुंज में जाने लगा मैं
0: जी।
1: ये लोग सारी बहने तब प्रभु कुंज पेटर रोड में रहते थे
0: जी, बिल्कुल
1: जी। लता जी को भी मालूम था कि मैं आशा जी से बहुत क्लोज हूँ, तो जैसे ही मैं जाता

0: पता तो बोलती थी तू आशा से मिलने आया है ना तो एक अजीब सा, तो मैं आपको एक मुखड़ा और अंतरा खाली हाथ शाम आई का बजा के सुना रहा हूँ।
1: जी जी।

0: वाह पंडित जी, आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। और सचमुच जब फिल्मी गाना सुनते हैं खाली हाथ शाम आई तो भी हम यहाँ स्टूडियो में सुनकर सचमुच अभिभूत हो गए। तो अब बताइए, अब क्या आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: 1990 आते आते क्लासिकल 16 तो मैं पहले से ही था, ये नहीं कि फिल्म में मैं पहले बजाया और फिर क्लासिकल। क्लासिकल तो मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: मगर नाम नहीं हुआ था मेरा, पहचान नहीं बनी थी, तो 1990 से ना मेरी पहचान होने लगी।
0: जी।
1: तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग मिस कर जाता था तो पंचम दास से बोलती थी कि अरे वो रोनू नहीं है, फिर कैसे चलेगा?
0: क्या बात है।
1: क्या, कौन बजाएगा ऐसे?
0: जी।
1: तो एक एल्बम कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तो उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। जब पंचम दास चले गए तो लोगों को मालूम पड़ा कि दिल पड़ोसी है
0: जी
1: क्या एल्बम था।
0: जी।
1: उसमें एक गाना था गुलजार साहब का लिखा हुआ, सातों बार बोले बंसी एक ही बार बोले ना।
0: वाह, तो ये आप बजा के सुनाएंगे?
1: मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ।
0: जी।
1: तो उस गाने की खास बात ये थी कि मैं था अमेरिका में और उन्होंने और भी बांसुरी वादक थे
0: जी
1: जिससे बजवा सकते थे, वो लोग दिए थे, वो थे, सभी अच्छे हैं, बुरा तो कोई है नहीं,
0: बिल्कुल
1: सभी अपने हिसाब से अच्छा ही बजाना चाहते हैं। मगर मेरे लिए इंतजार किया।
0: क्या बात है,
1: ये गाना तो अमेरिका से आ जाएगा तो ही होगा रिकॉर्ड।
0: वाह।
1: और फिर वो आशा जी की मेरी जुगलबंदी हो गई।
0: जी, जी।
1: ऐसा नहीं लगा कि मैं संगतकार हूँ, मैं उसमें छोटा सा पीस बजा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता
0: जी।
1: तो मैं सातों बार मैं सुना रहा हूँ आपको
0: जी। स्वागत।

0: वाह दादा, आपने तो फिर एक बार अभिभूत कर दिया। और बस दिल पड़ोसी एल्बम का ये जो सुरीली तान आपने छेड़ी, बहुत अद्भुत थी। तो अब आज की इस कड़ी को यहीं समेटते हैं, श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया। आइए आपको सुनवाते हैं पहली तारीख फिल्म का ये गीत, क्योंकि आज है पहली तारीख जुलाई की। किशोर कुमार का गाया गीत, कमर जलालाबादी के बोल है, सुधीर फड़के का संगीत।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना।

पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना

बाबू वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

है पुराने मेहरबान है, बड़े ही करीब है पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: भी खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है।
1: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सी अर्जुन का जन्मदिन, उन्हें याद करते हुए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम भूले पिछले गीत में। आगे के सारे गीत उन्हीं के संगीत बत किए हुए सुनिए ये गीत पुनर्मिलन।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए आपको बताते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 7:20 से और शाम 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम अमृत कलश। आप सुनेंगे प्रातः 7:30 से, प्रातः 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम, प्रातः 8:30 से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आज की बात होगी वन महोत्सव सप्ताह विषय पर, साथ ही भवानी प्रसाद पाठक से काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुनेंगे प्रातः 9:00 से, प्रातः 9:30 से और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या, दोपहर 12:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग, शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 से। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुनेंगे दोपहर 1:00 से। दोपहर 2:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि, दोपहर 2:30 से कार्यक्रम अंगना में चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह विषय पर, साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक सुरमाला, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 3:00 से, शाम 5:00 से कार्यक्रम युवाणी में चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह विषय पर, साथ ही व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आप जानेंगे डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में, साथ ही इसी कार्यक्रम में खेल जगत की कुछ दिलचस्प खबरें आप जानेंगे खेल संसार के अंतर्गत, कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे शाम 6:10 से और कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुनेंगे रात्रि 8:15 से, शाम 6:45 से कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा होगी खेत बचाओ अभियान मिट्टी टेस्ट के बिना खाद न डालें, साथ ही इसी कार्यक्रम में गणेश शंकर यादव और राम प्रकाश पांडे की बातचीत प्रसारित की जाएगी KCC और फसल बीमा की योजनाएं विषय पर, साथ ही इसी कार्यक्रम में आप जानेंगे बाजार

0: और मौसम का हाल। रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिले गजल। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। UPTET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे UPTET 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरख

0: रामपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
3: वो लोग माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम

0: काम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
1: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने। बीज

0: तो कब के बो दिए?
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
0: मास्टर जी ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास मानव जीवन का वह अमर प्रकाश है जो भाग्य के घने अंधकार में भी आशा की स्वर्णिम प्रभाव बिखेर देता है। यह केवल एक धार्मिक भावना नहीं बल्कि आत्मा की वह दिव्य चेतना है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने का अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करती है।

प्रभु श्री राम का नाम स्वयं में एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। राम नाम मात्र से ही सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए प्रभु श्री राम के मंत्रों का जाप करने से मनचाही कामना पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, राम नाम जपते रहिए और जीवन के उस आनंद को प्राप्त कीजिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अबनियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। सर्वोच्च परालौकिक शक्ति अर्थात ईश्वर निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते मगर महसूस जरूर कर सकते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही वो अटूट विश्वास है जो हमें एहसास कराता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है।

ईश्वर पर अटूट विश्वास जीवन का वह दिव्य अमृत है जो मन को शांति, आत्मा को पवित्रता, विचारों को उज्ज्वलता और कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। यही विश्वास मनुष्य को साधारण से असाधारण, सीमित से असीम और संघर्ष से सफलता की ओर ले जाता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: ईश्वर की असीम कृपा आपके जीवन को सदैव सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य अटूट आत्मबल और अनंत सफलताएं दी। इसी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश का आज का सफर बस यहीं तक।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण अंत

0: उद्योग और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।

0: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर

0: अल्लाह ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
1: अंतिम परिचालन की
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:23 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
6: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
7: नहीं अछूता हो जिस
6: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

कार्यक्रम में सबसे पहले आज की बात और आज की बात का विषय है वन महोत्सव सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, जहाँ वृक्षों का सम्मान होता है वहीं प्रकृति मुस्कुराती है। वृक्ष केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के प्राण, पृथ्वी की धड़कन, जीवन का शाश्वत आधार और आने वाली पीढ़ियों की सबसे अमूल्य धरोहर है। वन महोत्सव सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में महान विचारक एवं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य केवल वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण की भावना और सतत विकास की चेतना का राष्ट्रीय उत्सव है। मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन धरोहर और पृथ्वी के जीवन चक्र के सबसे विश्वसनीय संरक्षक हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु, औषधियां, फल, पुष्प, जल स्रोतों का संरक्षण, उपजाऊ मिट्टी तथा असंख्य जीव जंतुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। वन जलवायु को संतुलित रखते हैं। वास्तव में यदि वन पृथ्वी की सांस है तो वृक्ष उसकी धड़कन। जब धरती की धड़कनें हरियाली के स्वर में गूंजती है, जब पवन वृक्षों की शाखाओं पर जीवन का संगीत गुनगुनाती है, तब प्रकृति वन महोत्सव के रूप में मानव को अपने अस्तित्व की रक्षा का संदेश देती है। आज बढ़ता प्रदूषण, वैश्विक तापवृद्धि, जलवायु परिवर्तन और वनों की अंधाधुंध कटाई मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में वन महोत्सव सप्ताह हमें यह स्मरण कराता है कि प्रकृति का संरक्षण केवल विकल्प नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। जब भी कोई पौधा धरती की गोद में रोपा जाता है तभी भविष्य की सांसों को नया जीवन मिलता है। वृक्ष केवल छाया ही नहीं देता, वह समय को शीतलता, पृथ्वी को हरियाली, वातावरण को जीवन और मानवता को भविष्य प्रदान करता है। तो आइए वन महोत्सव सप्ताह के पावन अवसर पर हम सिर्फ पौधे न लगाएं बल्कि प्रकृति के साथ अपने संबंधों को भी हरा भरा बनाएं। क्योंकि जहां वन सुरक्षित है वहीं जीवन है, जहां हरियाली मुस्कुराती है वहीं मानवता का भविष्य खिलता है।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: सुनिए जी, सुनिए, आपसे ही बात कर रहे हैं। क्या आपने 12th पास कर ली? या घर में कोई 10th या 12th पास है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला में लाइए, जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, पैकर स्किल्स, यश ITI, दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देख किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आए आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhya@gmail.com।
4: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं काव्य पाठ, वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। कवि है भवानी प्रसाद पाठक।
6: गजल की चंद लाइनें समर्पित हैं

शेर है कि हो जा रही है लुप्त पक्षियों की जातियां, हो जा रही है लुप्त पक्षियों की जातियां, मानव का धर्म है कि जान उनकी बचाए, मानव का धर्म है कि जान उनकी बचाए। और मक्ते का शेर हुआ है कि बिगड़ा नहीं है कुछ भी, समय शेष है नीरज, बिगड़ा नहीं है कुछ भी, समय शेष।

बनाए अवधि में जो छंद दे रहा हूं, आशीर्वाद चाहूंगा आप सबका। ये को पेड़ के हो ये कहा नुकसान वही दुई पेड़ लगावे कबा, ये को पेड़ के हो ये कहा नुकसान वही दुई पेड़ लगावे कबा, ये को पेड़ रहाई अमवा के जरूर जो माई के नाम उगावे कबा। कटी जाती है बन यो बगिया यह पै कछु रोक लगावे कबा, और जही भांति से ठीक रहा जलवायु वही दिग पाँव बढ़ावे कबा, जही भांति से ठीक रहा जलवायु वही दिग पाँव बढ़ावे कबा। और एक मुक्तक और प्रस्तुत करता हूँ कि हफ्ता में कबो एक रोज सही, हफ्ता में कबो एक रोज सही संग पैदल या फिस आवे कबा, हफ्ता में कबो एक रोज सही संग पैदल या फिस आवे कबा, और नल हुकन छोड़ा खुला कबहू जल बूंद ही बूंद बचावे कबा, एक रोज चला कबहू घर मां, एक रोज चला कबहू घर मां बिजली बिन काम चलावे कबा, बिन बोला तमाशा बियाह करो यही पर्यावरण का बचावे कबा, बिन बोला तमाशा बियाह करो यही पर्यावरण का बचावे कबा। और मित्रों मुक्तक दे रहा हूं, समाप्त फरमाए। है आदमी तो फर्ज निभाने की बात कर, है आदमी तो फर्ज निभाने की बात कर, माँ का ऋणी है कर्ज चुकाने की बात कर, हो जाए न धरती कहीं वीरान इसलिए पर्यावरण को अपने बचाने की बात।

0: कर, पर्यावरण को अपने बचाने की बात कर। और मित्रों एक मुक्तक और देता हूं कि पन्नी कभी बाजार से लाना ही नहीं है, पन्नी कभी बाजार से लाना ही नहीं है, कचरे का ढेर घर में लगाना ही नहीं है। और पर्यावरण हो शुद्ध कुछ ऐसा यत्न करो, घर अपना हमें घूर बनाना ही नहीं है, घर अपना हमें घूर बनाना ही नहीं है। और श्रोताओं छंद के माध्यम से देखिए एक सुझाव पर्यावरण पर दे रहा हूं कि शुद्ध प्राण वायु और शुद्ध नीर चाहिए तो, शुद्ध प्राण वायु और शुद्ध नीर चाहिए तो, जंगलों का बेवजह कटान छोड़ दीजिए। और आ रहे हैं जल जले समुद्र भर रहा उफान, तापमान बढ़ रहा खदान छोड़ दीजिए। वाहनों का शोर व धुएं का फैलता गुबार, ले रहा है जान शोक शान छोड़ दीजिए। और नफरतों ने ले लिया है युद्ध का विराट रूप, हो सके तो शस्त्र का उठान छोड़ दीजिए, हो सके तो शस्त्र का उठान छोड़ दीजिए। और आखिर में आप सबका आशीर्वाद चाहता हुआ एक मुक्तक दे रहा हूं कि खुश्क होठों पे प्यास होती है, खुश्क होठों पे प्यास होती है, जिंदगी जब उदास होती है, आप होते तो दूर हो लेकिन आप ही की तलाश होती है, आप होते तो दूर हो लेकिन आप ही की तलाश होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भवानी प्रसाद पाठक से काव्य पाठ वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। और अब कार्यक्रम में समाचार पत्रों से शहर की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से ठीक पहले राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षकों को राहत दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें 2, 3 और 4 जुलाई को उनकी परीक्षा तिथि के अनुसार अवकाश मिलेगा। जिले के करीब 2000 शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और करीब 40 दिन के ग्रीष्म अवकाश के बाद जिले के सभी राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय आज से विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे। नए शैक्षिक सत्र के नियमित संचालन को लेकर विद्यालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिसर की साफ सफाई, कक्षाओं की व्यवस्था, पेयजल, बिजली और बैठने की व्यवस्था को ठीक कर लिया गया है। मानसून वर्षा का क्रम लगातार जारी है। सोमवार को भी भोर से लेकर सुबह 8 बजे तक रुक रुक कर बारिश का क्रम चलता रहा। करीब 20 मिलीमीटर बारिश हुई। दिन भर बादलों और सूर्योदय के बीच आंख मिचौली होती रही, इससे वातावरण में उमस भी घुल गई। वहीं आज और गुरुवार को मानसून की पहली बारिश भी हो सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, जेई, नीट और अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन और ऑनलाइन निःशुल्क कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।
2: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकॉर्ड।

0: साहिबगंज फैजाबाद कॉल करें 91 16 76 47 46
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है मैं आशुतोष राणा मैंने जाना एरियमर आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
2: प्रणाम अयोध्या
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं प्रातः के 9 बजे हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
4: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से
6: हेलो
7: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
8: माय नंबर इज
9: 7376804090
10: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें 7376804090
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम इतना ही नहीं अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज घड़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
11: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
12: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का आपका अपना कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत के आज के सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से इस गीत, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीन और निप्पी साहनी और अफजाल मलिक ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

और कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा संगीत आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में।

0: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
4: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देते हैं।
3: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
4: जी हाँ, और वो है योग।
3: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
4: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
3: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
4: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
3: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।

आपका अपना कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी साथी परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा संगीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

और कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है बन्ने बुजुर्ग परेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बीजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म मरजावा से ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं। फिल्म अखियों के झरोखों से और इस गीत को सुनना चाहा है जगदीश धाकर नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर और शिवांगी धाकर। और ये संदेश आया है हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म अखियों के झरोखों से ये गीत हेमलता की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
4: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बोती है।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: नमस्कार, आदाब, सप्रेम वंदन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। और आज के इस सफर में मैं हूँ ऋचा आपके साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 7376804090। हेलो।
6: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
6: मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
6: मेरा नाम शिवपाल सिंह है, नवाबगंज गोंडा बिश्नोहरपुर से।
0: जी शिवपाल जी, क्या करते हैं आप?
6: बस खेती करते हैं मैम।
0: जी खेती करते हैं, और आज से वन महोत्सव जो है सप्ताह मनाया जा रहा है।
6: जी मैम।
0: जी
6: तो, अधिक से अधिक ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। उसे काटना मत चाहिए।
0: जी काटिए कम, लगाइए ज्यादा।
6: जी
0: जी, और किस फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
6: राजा औरंग का।
0: चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। शिवपाल जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
6: जी मैम, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं अवध नगरी की धड़कन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां हर कॉल एक कहानी बन जाती है और हर कहानी एक एहसास। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आपका शुभ नाम?
1: हम अनुसुईया दास बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश रीवा जिला गुड़कटरा मोहल्ले से बोल रहा हूँ।
0: जी अनुसुईया दास जी, लगता है बहुत दिनों के बाद आपकी कॉल लगी है।
1: अभी 2 महीने से मैं गाँव में हूँ एकदम, वैसे तो रघुनाथ जी आश्रम है परमोधन।
0: जी जी आप हमारे नियमित श्रोता रहे हैं, तो कैसा लग?
1: रहता हूँ 2 महीने से।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है, गांव का वातावरण कहीं ना कहीं और भी शुद्ध होता है। तो कैसा लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में?
1: बहुत अच्छा लगता है, बारिश हो रही है और मेरे गांव में यार भाई लोग है, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है,
0: जी जी पूरा परिवार है आपके साथ।
1: भाई के बहन है, दोस्त है।
0: जी जी तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गाना ये बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा आया है, ये वाला सुनना है।
0: जरूर हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
1: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, पोस्ट
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
1: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: सजीव फोरिन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हेलो
5: हेलो
4: जी, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम?
5: हाँ जी, नमस्कार मैडम
4: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम मनोहर लाल मेहर है, मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से।
4: जी जी, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया है मैडम
4: जी। क्या करते हैं?
5: एक सोसाइटी में काम करता हूँ, मोदी जी के 5 किलो मिलते हैं ना, उसमें काम करता हूँ मैडम
4: जी। बहुत अच्छी बात है। तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
5: वो निगाह फिल्म का है, किसे ढूंढता है पागल सवेरे
4: जी। और एक बात बताइए कि जैसे अपनों में या खुद में स्वयं में बहुत सी कमियां होती हैं, इसे जानते हुए भी हम स्वयं से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरों की जरा सी कमी से हम उसको गलत मान लेते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? दूसरों में कमियां ढूंढना बहुत ही आसान है। मैंने ये कहा कि जब स्वयं में कोई कमी होती है फिर भी हम अपने से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना?
5: अच्छा।
4: और जब दूसरों की थोड़ी सी छोटी सी भी भूल को हम उसको गलती मान लेते हैं, उसको गलत मान लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
5: हाँ तो मैम गलत नहीं मानना चाहिए ना, जैसे हम अपने के साथ करते हैं वैसे दूसरे के साथ करते हैं।
4: जी जी एकदम। अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह हम खुद को माफ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुद को समझाते हैं, उसी तरह हमें औरों को भी माफ कर देना चाहिए। चलिए हम आपको सुनवाते हैं।
5: जी हम अपने के साथ करते हैं वैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए।
4: एकदम एकदम, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद
5: जी। धन्यवाद मैम।

0: आप सुन रहे हैं अयोध्या के दिल की धड़कन, आपका अपना कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: हाँ मैडम नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, आपका शुभ नाम?
1: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना, देवकाली रोड।
0: जी अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप?
1: जी दुकान करता हूँ मैडम, दुकान पर बैठा हूँ, पान की दुकान है अब मेरी।
0: जी, और आकाशवाणी अयोध्या सुन रहे हैं?
1: अरे मैडम आकाशवाणी अयोध्या तो बहुत अच्छा चीज है, अब तो उसी सुबह शाम, अभी सुबह खुलता है, अब दुकान पे आए हैं, रात को 8 बजे जाएंगे, फिर रात में घर दूसरा रेडियो चलेगा।
0: जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: हाँ मैडम
0: जी, आप जैसे श्रोताओं से ही ये हमारा आकाशवाणी अयोध्या है।
1: जी, हाँ मैडम,
0: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म है तालिया मैडम,
0: जी
1: कौन किसी को बांध सके तैयार तो इतनी जाना,
0: जी बहुत
1: मोहम्मद
0: ही
1: रफी की आवाज है
0: जी
1: मैडम।
0: बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने पसंद किया है, तो हम
1: हाँ हमारे हमारे एक मित्र हैं अशोक कुमार सोनकर, उर्फ दीपू सदर बाजार के, उन्होंने
0: जी जी
1: कहा था हमने आपके रिक्वेस्ट से गाना भजवा दीजिए।
0: जी तो हम आपको सुनवाते हैं आपके दोस्त की पसंद पे ये गीत। एंजॉय कीजिए अपने इस गीत को। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी मैडम धन्यवाद।

0: 7376804090 ये नंबर डायल करके आप भी जुड़ सकते हैं हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए आपका अपना नंबर 7376804090। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, आपका शुभ नाम।
1: राम बोर से महाराष्ट्र, कैसे है मैम आप?
0: जी मैं ठीक हूँ, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए।
1: गीताराम बोर से डिस्ट्रिक्ट जानना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी गीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे है मैम?
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और क्या करते हैं आप?
1: हम तो किसी के समय करते हैं, हम किसी के समय के साथ साथ आप लोग ऐसे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत शानदार पारदार दर्जेदार कार्यक्रम होते हैं मैम आलोक जैसे।
0: जी जी हम लोग का यही प्रयास रहता है कि हमारे श्रोताओं को हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगे। तो पहले भी कॉल लग चुकी है कि पहली बार लगी है?
1: नहीं मैम, मेरा तो तीसरा तीसरा कॉल है मैम।
0: जी तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मुझे अभी
0: जी जी
1: सुनना
0: मानसून ने दस्तक दे दिया है, मुझे लगा आज आप बारिश कराकर ही रहेंगे।
1: बारिश का मौसम चल रहा है, मुझे गाना सुनना है।
0: वाकई मौसम भी बहुत खूबसूरत है, और ये खूबसूरत सा गीत सुनिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो अयोध्या
0: जी। हेलो अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम।
1: जी। दीदी ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: आज मध्य प्रदेश वालों की बल्ले बल्ले है, कुछ ज्यादा ही कॉल आ रही है।
1: जी दीदी आपका कार्यक्रम मध्य प्रदेश वाले काफी श्रोता सुनते हैं, यूपी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन अयोध्या और एक लखनऊ दीदी बहुत पसंद करते हैं मध्य प्रदेश वाले श्रोता।
0: जी, हमारे बहुत से श्रोता बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्या करते हैं आप?
1: दीदी हम खेती किसानी करते हैं और आज हमारे इधर बरसात बहुत अच्छी हुई दीदी जी।
0: बहुत
1: और
0: अच्छा।
1: अभी दीदी हम पेड़ लगाएंगे, आम के 10 पेड़ लगाने वाले हैं और वन उत्सव मना रहे हैं ना आप, तो इसके लिए सभी श्रोताओं को जागरूक होना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए
0: जी,
1: दीदी।
0: बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं और आप बहुत जागरूक श्रोता है। वाकई हम लोग वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, है ना? वृक्ष लगाएं क्या, वृक्षों से प्यार करें, उसकी देख रेख
1: दीदी
0: लगाना।
1: और उनको उनकी देखरेख भी करना है, उनको समय समय पर पानी भी देना है, जब वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद उसको भले ही देखरेख ना करें लेकिन 2-3 साल तो करना ही पड़ेगा उसकी देखरेख।
0: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह हमें वृक्षों का भी ख्याल रखना चाहिए। वृक्ष लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको संजोना, उसका संरक्षण करना बहुत बड़ी बात है।
1: दीदी मैंने पड़खे एक आम का पेड़ लगाया था पिछले साल दीदी, अब वो काफी बड़ा हो गया है और मुझे उसको देखकर बड़ी खुशी होती है कि चलो एक वृक्ष अपना थोड़ा बड़ा तो हो गया और काफी बड़ा हो गया 1 साल में दीदी।
0: वाकई बहुत बहुत अच्छा लगता है जो वृक्ष लगाइए और वो बड़े हो जाते हैं, और उससे अगर हम फल फूल उसको यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून देता है। जी, आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है हम हेरा ही प्यार के, गाने के बोल हैं वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, 3 दोस्तों को याद करना चाहेंगे
0: जी, बहुत
1: दीदी।
0: जल्दी, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, जल्दी से लीजिए।
1: दीदी
0: और
1: अयोध्या से हैं गुंजन तिवारी जी है और कानपुर से पूनम दीदी है और स्वाति सिंह जी है गोंडा से, और हमारे सर हैं अयोध्या के आर्जे अमरजीत सर, और
0: जी
1: आपको
0: जी
1: सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत और पूरा कार्यक्रम जो सुनाने का सही रूप से सुचारू रूप से सहयोग करते हैं, तो हम बता दें कि तकनीकी रूप से हमें सहयोग दिया अरविंद कुमार जी ने और स्वप्निल मिश्रा जी ने। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है,

0: आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब सखी तो रखिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़ जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की है ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
2: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
3: हाँ,
2: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
3: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
2: तो मुल्क के हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
3: मुल्क का गाना आप सुनाए, पिया समाए
2: जी,
3: बहुत अच्छा गाना,
2: बहुत पसंदीदा कबाली। कबाली है?
3: यस यस,
2: कबाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
3: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
2: जी में। बिल्कुल, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
3: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
2: जी,
3: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी।
2: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
3: जिक्र किया जाए,
2: दर्ज होती है आज के समय में।
3: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
2: बिल्कुल,
3: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
2: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात

0: प्रभु सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15 भीड़ कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15 इंतजारी, जिसे आयुष्मान
1: हाँ
0: खुराना ने गाया भी
1: जी
0: है
1: हाँ जी
0: और वो
1: हाँ इंतजारी
0: एक्टिंग
1: सुनवा
0: भी
1: सकते
0: करते
1: हैं
0: हैं।
1: आप
0: जी
1: बिल्कुल
0: तो
1: आर्टिकल 15
0: हाँ,
1: से।
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी,
1: उस गाने की कहानी ये है कि
0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ
0: जरूर
1: दिलचस्प नहीं दिलचस्प बात है।
0: बताइएगा।
1: अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है,
1: पड़ा है
0: इजाजत फिल्म का
1: लौटा
0: गाना
1: दो।
0: है।
1: हाँ तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे। हाँ उल्टा
0: अरे क्या
1: मतलब कि तो
0: बात है, सामान देना है
1: हाँ वो कह
0: मेरा
1: रहे कि
0: सामान।
1: वो कह रहे लौटा दो
0: हाँ
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ
0: हाँ
1: ठीक है।
0: संचय करना है
1: हाँ
0: यहाँ
1: हाँ
0: पर।
1: तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है गम है रोना है
0: जी
1: मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूं।
0: अच्छा क्या बात है, ये सारा
1: ठीक
0: कुछ एक गाने में
1: हाँ
0: आना।
1: तो तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं, वो साझा जो चीजें हैं हमारी मैं उसको अकेला जी रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं, तो तुम एक काम करो ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी।
0: जी
1: हाँ
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ इसी इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
0: क्या बात है, वाह
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
0: वाह
1: है
0: वाह, बहुत
1: ना
0: सुंदर।
1: है ना। अच्छा पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी, तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है कि इंतजार होता है इंतजारी लोग नहीं, तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना वो बहुत विशाल बहुत बड़ा मुल्क है
0: विविधरंगी है।
1: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है
0: बिल्कुल।
1: ना, कुछ नया लगता है जब, तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार कुछ नया लफ्ज ले आओ, तब उसकी जगह पे ये आया आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
0: जी
1: है और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की
0: रेजगारी।
1: रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा, तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो
0: क्या बात
1: ये
0: है।
1: सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना गया।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय है, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है ये, उसकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे और ऐसा, फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते हैं जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दो जल्दी,
1: और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था, आजकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और
1: मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है, अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद।

0: और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत, मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
1: बेहतरीन फिल्म
0: हाँ,
1: थी
0: डिफिकल्ट सिचुएशन
1: जी
0: थी।
1: जी
0: तो मैंने लिखा उसमें कि पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है, सात रंग हैं सातों पिया के।
1: सात रंग है सातों पिया के,
0: हाँ,
1: क्या
0: सात
1: बात
0: रंग
1: है
0: होते हैं,
1: जी।
0: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है,
1: ऊपर
0: ईश्वर है, भगवान है,
1: ईश्वर खुदा
0: ठीक है,
1: है।
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाओ कैसे,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल, दो अर्थ
0: तो
1: ही है।
0: हाँ, तो ये दो अर्थ ही, ये भी
1: हाँ
0: मैंने
1: हाँ
0: इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है,
0: है ना,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई
0: हाँ, अलग
1: पड़ेंगे।
0: अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भई में
0: भई मैं
1: उजली,
0: उजली,
1: वाह वाह क्या
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: बात है,
0: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूं,
1: जी।
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा उस सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई,
1: वाह,
0: बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी
0: हाँ
1: संदेश देता
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल
1: सब एकजुटता का
0: बिल्कुल
1: संदेश है,
0: बिल्कुल
1: और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: तो शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा। फिल्म धोखा एमएम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची
0: हैं। पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह लें योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर है वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था।

0: बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
1: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
0: जी जी, तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर, तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं ये गाना।

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों,
0: जी जी जी,
1: संदेशे आते हैं, या वीर ज़ारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे।
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था।
0: जी जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था। मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया में याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी। उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिख

0: है, तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया।
1: जी जी
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921, जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए, वो तेरा नाम था?
0: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था।
1: जी जी।
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी।
0: हाँ, तो मैं वही आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी, उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे, और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओह क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी, और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में।
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग वीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी।
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया

0: में कहीं थे वो,
1: हम्म,
0: मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर
1: कंपोज कर
0: लिए
1: लिए
0: थे
1: हैं।
0: और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था, वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है,
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ
0: हाँ
1: अच्छा, क्या बात है, नहीं अच्छी
0: वो
1: दिलचस्प
0: मतलब,
1: कहानी
0: हाँ
1: बिल्कुल है।
0: मतलब
1: हाँ
0: पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का,
1: हाँ
0: लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये
1: हाँ
0: गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं
1: क्या
0: कि
1: बात
0: गजल बाद में, गाना बाद में बना,
1: है, जी।
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, कि उनकी वाइफ थी
1: जी
0: और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के
1: मधोशी बन गया,
0: मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था,
1: वाह।
0: बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है।
1: जी।
0: ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कई वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना, दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से,
1: कि मुझे
0: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं
1: ओ क्या गया, इतना बड़ा
0: गवाया।
1: कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं कि पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको।
1: जी
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है,
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत खूब।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर
1: हाँ,
0: ये सुबह इसी गाने से होती है,
1: क्या
0: डेली
1: बात
0: ये गाना
1: है।
0: बजता है। हाँ
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मधोशी है मधोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपकी करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं

0: जो रामायण है
1: जी
0: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे

0: रामायण कही है मैंने कहानी, तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है। हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है,
0: पिछले 3 साल से लगातार। और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है,
0: तो हाँ बहुत शुक्रिया,
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था, जहाँ अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं, शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से, उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है,
0: मोहब्बत करते रहो। आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है,
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल,
0: उनके हाल पर। मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है,

0: अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तकलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी,
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगु जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेरी तन्हाई सुनहरे गानों का बिछौना यादों का मीठा राग जज्बात की नरम छांव प्यार की चुवन अपनेपन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे

फिल्म ताजमहल की ये कवाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाजों में, साहिर धानवी के बोल थे रोशन का संगीत था।

0: मोहिनुद्दीन का कलाम आपने सुना, खयाम की तर्ज थी। लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाजों में यह गजल थी फिल्म बाजार से।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे अपनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पीलू जी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर

0: लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जो कोरी आयुष्मान खुराना की तरस थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल, रफीक हुसैन और रफीक जयपुरी के लिए ये गजल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वाधिक ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: है। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा।

0: वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: जमाने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मंजू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में फिल्म थी तीसरी मंजिल
1: ये चीज खास मैंने उस अंजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देवबर्मन का, फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का यह अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बात।
1: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें।

0: और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मम्मी मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
1: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम। अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम लोक रंग में और कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं छविलाल पाल और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

जी हाँ दोस्तों, देखिए आज हम वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं, जो कि आज 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखने में योगदान दीजिए, जैसा कि इस प्यारे से गीत में बताया गया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला लोकगीत, बेचन राम और साथियों की।

0: दोस्तों हाजिर होते हैं बस एक छोटे से अंतराल पर।
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दूसरे अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर आपके साथ लोक रंग और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और आइए आपको सुनवाते हैं अनीता श्रीवास्तव और सखियों की आवाज में ये पर

0: अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के ठीक एक बजे हैं। आइए सुनते हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या

कुछ तुमने कहा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपके द्वारा दिए गए संदेशों को जो कि हमें 11 बजे तक प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम शामिल करते हैं, इसलिए आप सभी अपने कमेंट्स को

जिस करें कि 11 बजे तक अवश्य ही भेज दें। जी हाँ, और आइए अब शुरू करते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला। पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है, रवि कुमार राहुल जी की कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से, संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से फरमाइश करते हैं, मोहम्मद यासीन अंजान दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से फरमाइश भेजते हैं, श्री कृष्ण बठे धारडी नांदुरा महाराष्ट्र से फरमाइश भर करते हैं, नरेन नीतम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं, रविन्द्र दास किशनगंज बिहार से, प्रताप पांडे कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, श्रवण कुमार प्रजापति जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेजते हैं, नाना लाल से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेहड़ी से, पीरजादा मेहराजुद्दीन सलार पहलगाम कश्मीर से फरमाइश कर रहे हैं, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेजते हैं, अरुण कुमार मालवी बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से फरमाइश कर रहे हैं, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेजते हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पे फिल्म कर्तव्य से ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

सो आकाशवाणी के अयोध्या से कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा। और आपको बता दें कि आज है 1 जुलाई, यानी कि जैसा हम सभी जानते हैं आज से 7 जुलाई तक हम सभी वन महोत्सव मनाएंगे, यानी कि पेड़ों का त्योहार। ये पेड़ों का त्योहार मनाए जाने वाला 1 सप्ताह का वृक्षारोपण उत्सव है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वनों की कटाई को रोकना। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को कम से कम एक पेड़ तो अवश्य ही लगाना चाहिए और प्रकृति की हरी भरी होने में, प्रकृति की हरियाली में अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। जी हाँ, यूरोप शामिल करते हैं कार्यक्रम में कुछ और नाम जो कि हमारे दोस्तों ने अपनी फरमाइश करते हुए भेजी हैं। गजानन येले सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से, विष्णु टेलर दयानंद कॉलेज भवानीपेट महाराष्ट्र से फरमाइश करते हैं, नरेश मल्होत्रा नीटू खैल बाजार पानीपत से, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बलिया से फरमाइश करते हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, सुरेश गंगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, उत्तरा दिवाकर पीपर पारा पाल चुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से फरमाइश करती हैं, राजेश अकेला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, नीलू मेघ राजधानी रायपुर से फरमाइश करते हैं, उमेश कुमार गौड़ बुलंदशहर से, आफ्ताब अंसारी गंज डोडवारा से, कमल शाह ने नागपुर महाराष्ट्र से और बीआई धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं, रविन्द्र सिंह छाबड़ा टैगोर गार्डन से, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से फरमाइश करती हैं, राजेश कुमार वर्मा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से और नरेश मल्होत्रा नीटू खैल बाजार पानीपत से फरमाइश करते हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं पाकिजा फिल्म से ये गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और हम शामिल कर रहे हैं अपने दोस्तों के फरमाइशों को जो कि हमारे पास फेसबुक के माध्यम से आई हैं। अगले श्रोता है हमारे जो कि फरमाइश भेजते हैं पिपरिया से, कमल कांत गुप्ता जी, वेद प्रकाश मिड्ढा नाई वाला, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश कर रहे हैं। नरसिंह राजपूत महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेजते हैं। मसूर हसन कुमार हेड़ा सहारनपुर से, रजाक खान डानकी रोड उमर खेड़ से, फैजल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फरमाइश करते हैं। सुनील पाठक जगराव पंजाब से, शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से फरमाइश भेजते हैं। धीरज गुप्ता उघैटी बदायूं से, राहुल शाहू नगर यवतमाल से फरमाइश कर रहे हैं। प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, राजकुमार

मारू डूडी फरांसी जिला हिसार से, वीरेंद्र भगत हजारीबाग झारखंड से फरमाइश करते हैं, शुभचंद्र बजाज कालका से और श्रवण कुमार प्रजापति जी की फरमाइश हमारे पास आई है गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज में शोले फिल्म से।

कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोरम प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
2: दोस्तों, अंतराल के बाद फिर से हाजिर है कार्यक्रम लेकर कुछ तुमने कहा, और शामिल करते हैं अपने कुछ और दोस्तों के नाम। सुभाष गोदारा फाजिलिका पंजाब से, राघव बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं, विनोद बरासा गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से, ओम बागड़िया गांव बांडी वाला फाजिलिका से, रश्मि पांडे राजकोट गुजरात से, और विनायक बेंडे आकोट से, संजय मारकंडे बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से फरमाइश करते हैं, रामकुमार रेवार सारदूर शहर राजस्थान से, कुंवर कृपाल सिंह गुल बालोद आलोर जिला रतलाम से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं, उत्तम सिंह जंगेल कोका भिलाई से, प्रवीण सोनी गुजरात गांधीग्राम से, गोविंद वैष्णव लसूड़िया पाता राजगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं, तुलसीदास शुक पंचकुला चंडीगढ़ से, प्रवीण हैगोन महाराष्ट्र से, नरेंद्र सुभार सुथार हनुमानगढ़ राजस्थान से, राष्ट्रपाल गजभिये छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से, शंकरलाल जायसवाल नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से फरमाइश कर रहे हैं। आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म दो रास्ते का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, फेसबुक फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम हमारा है आपके लिए। तो आइए शामिल करते हैं अपने कुछ और दोस्तों के नाम जो कि हमारे पास फेसबुक पर आई हैं। बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, नरेंद्र शर्मा जेटली कलानौर से, मनोज नामदेव शिवपुरी मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजते हैं, हल्के जयपाल यादव महोबा बुंदेलखंड यूपी से, मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश करते हैं, सैयद यूनुस जालाना मराठवाड़ा से, सोमदत्त नाभा पटियाला पंजाब से, अशोक श्याम कुंवर भिलाई नगर से, देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा उगहती से फरमाइश भेजते हैं, प्रभाकर गुप्ता उगहटी उत्तर प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं, मुकेश गौतम चंदौसी रोड चमनपुरा से, सुमेंद्र यादव उसावा जिला बंदायू से, अनिल वर्मा सदर बाजार कुरावली से, अनवर अंसारी पंजाब से फरमाइश करते हैं, माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, जगदीश धाकड़ हिंगड़ी आलोट से, प्रवीण शुक्ला राहुल नगर अमरावती से, स्वर्ण गिल फरमाइश करते हैं लोगढ़ ठाकुरावाला से। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं निकाह फिल्म से ये गीत।

दोस्तों आइए शामिल करते हैं कुछ और अपने दोस्तों की फरमाइशों को। अब्दुल सत्तार अब्बासी मुगलपुरा बागपत से, तिलक राज अरोरा खुर्जा यूपी से, चंद्रेश गौहर सागर मध्य प्रदेश से, सोपान तायडे मुगलवाड़ी मागुलवाड़ी महाराष्ट्र से फरमाइश करते हैं। गुरमीत सिंह मेहता नई दिल्ली से, गुलाब दास मानीपुरी लेवाई छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजते हैं। सदाशिव थोरात पूर्णा महाराष्ट्र से, मोहम्मद अफजाल ताज कोल सिटी बरका काना से, विनोद लखनपाल रावर करनाल से, किसान सकपाल शास्त्री नंगे बीज शहर से, दीपेश वर्मा पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं। मुकेश गोस्वामी उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, राजपाल आदर्श नगर मालोल से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, दातार सिंह सीकर राजस्थान से। आइए आप सभी को सुनवाते हैं पत्थर के सनम मूवी का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद।

0: भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक न करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग न करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपकी अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
3: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
2: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिलाओं और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
3: पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
2: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन।

सौ अंतराल के बाद फिर से हाजिर है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा लेकर आपके साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, जहाँ वृक्षों का सम्मान होता है वहीं प्रकृति मुस्कुराती है। वृक्ष केवल प्रकृति का सिंगार नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के प्राण है, पृथ्वी की धड़कन है और जीवन का शाश्वत आधार है। पर्यावरण संतुलन के लिए धरती पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें सुरक्षित भी रखें। सोनी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाओ करो श्रृंगार। जी हाँ, वृक्ष लगाइए, देश को समृद्धशाली बनाइए। वन हमारे देश की संपदा है, इन्हें मत काटिए। धरती को हरा भरा रखिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। जी हाँ, इन्हीं बातों के साथ शामिल करते हैं कार्यक्रम में अपने कुछ और दोस्तों की फरमाइशों को। मुरादाबाद से फरमाइश आई है अजीत कसाना जी की। मेरठ से दिग्दर्शन कौर जी फरमाइश करते हैं। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल। नंद किशोर घटे बीड शहर महाराष्ट्र से कमल सिंह मजनू का टीला से फरमाइश करते हैं। बालक राम वर्मा बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं। हुकुम कर्माकर बेरेड़ी मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं। आर्यन राज मुजफ्फरपुर बिहार से, प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से फरमाइश करते हैं। ताज अंसारी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश भेज रहे हैं। रूपेश संगई परभड़ी महाराष्ट्र से, कांति शुक्ला लोवा टीपरा गोंडा से फरमाइश करती हैं। बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से फरमाइश कर रहे हैं। हरजिंदर छिंदा नथाना पंजाब से, नबी हसन हब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से फरमाइश कर रहे हैं। सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से और ज्ञान भूषण शर्मा रावर करनाल से फरमाइश भेजते हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं नदिया के पार फिल्म से ये गीत।

दोस्तों एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, और फरमाइश हमारे पास आई है दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से, प्रेम सिंह बरवाल बहलोल नगर हनुमानगढ़ राजस्थान से, रमेश चौहान जोधपुर राजस्थान से, मोहम्मद यासीन गंज डुंडवारा से, अहमद यासीन बागवान छोटी बलिया करजत मुंबई से, राजेंद्र नारंग बटिंडा रोड डबवाले से फरमाइश करते हैं, जसवीर सिंह हरियाणा से, विठल सुरोज से काटा रोड वशिष्ठ महाराष्ट्र से, इरशाद अहमद मांडियाहू जौनपुर से, संतोष कालेज शंगाव बुलवाड़ा महाराष्ट्र से, सत्येंद्र चंदसौलिया पंजौनिया जालौन से, भागवत चौबे लाटा जी सागर लख नादौन मध्य प्रदेश से, शंभुदयाल जाखोद राजस्थान से, टीडी मल्होत्रा मोहाली चंडीगढ़ से, हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और बी के हीरेंद्र दास असम से फरमाइश करते हैं, सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से।

दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में शामिल कर रहे हैं लोफर फिल्म से ये गीत और शामिल करते हैं अपने कुछ और दोस्तों की फरमाइशों को। पुखराज बड़गुजर नोखा राजस्थान से, संदीप कुमार गोराया जालंधर से फरमाइश करते हैं, बब्बल मल्होत्रा मोहाली पंजाब से, अशोक सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं, मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से, तुलसी मस्किन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, सुखविंदर सिंह दौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से, सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, राधा नामदेव सहारनपुर से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ कैंट से, अब्दुल गफूर कैसर बहल नगर से, मुकेश कश्यप जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं, सदानंद मंदूरकर डाबकी रोड अकोला से, उमेश कुमार गौड़ बुलंदशहर से, मुकेश कश्यप मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से और मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से फरमाइश करते हैं, मनोहर मगर अक्षय कॉलोनी गोदूर रोड धूलिया महाराष्ट्र से फरमाइश कर

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। और कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

0: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
0: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
1: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
1: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com पर।
0: AYODHYAKASHVANI@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: आईना देख के बोले ये समझ।
1: अंतराल के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और आशा भोसले की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। 2:15 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं।

0: डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए

0: सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: इंडिया एंगेजमेंट भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है,
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई

2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ANR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैनर प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम अंगना।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बार आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
4: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
6: सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा हो वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते हैं। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
6: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अन्ना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991 पे जाके ANGA टाइप करें।

हो जात हैं कम, आओ पेड़ लगाई हम, वन महोत्सव मनाई और धरती का स्वर्ग बनाई। सभी प्यारी सखियों और श्रोताओं का वन महोत्सव का ढेर शुभकामना के साथ ही हाजिर है आपके रेडियो सखी वंदना। सभी श्रोता जन और प्यारी सखियों स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, पेड़ पौधा और वन सिर्फ हमारे धरती मैया के सिंगार नाए है, बल्क ये हमारे अस्तित्व और जीवन के असली आधार है। यही के ताई हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनावा जाता है, ताकि लोग इकरे बदे जागरूक हुए, इकरे बारे में सोचे समझे। और आज देखो ना, जो भी तरीके से प्रदूषण बढ़ जाता है, मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव आ जाता है, ऐसे में पेड़ के अहमियत और ज्यादा बढ़ जाता है। कहे से वन हमारे सभी का न केवल जीवन दायनी ऑक्सीजन देते, बल्क ये तपती धरती मैया का ये छांव और हमें सभी के खुशहाली का नवा विस्तार देते। ये पहले दिल बात दिल लाइन याद आवती, पेड़ पौधे हैं वरदान, इनसे ही है सबकी जान। भाई ये सब एकदम पूरा सार्थक भी है। ये वन महोत्सव सिर्फ एक दिन के या एक सप्ताह के उत्सव नए हैं, बल्क ये प्रकृति के प्रति हमें सभी की जिम्मेवारी का याद दिलावत है। आवे ये अवसर पर हमें सभी मिल के इस संकल्प ली कि केवल भैया देखो फोटो खिंचवावे के ताय ना है, भैया जगह फोटो खिंचवाओ खोते तो जात है, पेड़ पौधे के लगे जात है, फूल के लगे जात है, बढ़िया बढ़िया नीक मेर के फोटो खिंचवाओ थे तो बड़ा नीक लागत है। भाई खाली फोटो खिंचवावे के ताय ना है, बल्क दिल से जिम्मेदारी निभावे और एक पौधा जरूर लगावे और वो कह तब तक देखभाल करे जब तक वो एक बड़ा पेड़ या वृक्ष न बन जाए, ताकि हमार आवे वाली पीढ़ियों का शुद्ध हवा और पानी नसीब हो सके। जब हरी भरी हुई धरती तबे मुस्कुराए जिंदगी, और हमने सभी मिल के कदम बढ़ाई और हर कोने का हरा भरा बनाई। तो देर कोने बात कहे, आज एक पौधा रोपे और धरती मैया का हरी चुनरी ओढ़ावे मां अपन योगदान दे, पेड़ लगावे जीवन बचावे। और भैया यही सुंदर बतकही के साथ ही देखो आज है दिन बुधवार, हुई फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक सुरमाला जमीन, आपकी पसंद के लोकगीत आप सभी का सुनवा जाते हैं। तो आज हम फरमाइश ली थे पहली भोला आपन बरात, यह लोकगीत जो उनकी संगीता मिश्रा और उनके पार्टी की आवाज में है। ये गीत लोकगीत की फरमाइश आई है दत्रिकी भटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पाशमणि वर्मा, पुष्पेन्मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और एक साथ ही यही गीत की फरमाइश आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल बोट कांगड़ा, तन्वी बोट, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। ये कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश की है। दनोरी तेरी वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। ये भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश की है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जयलाम से, हर्षिता लाम से। आप भी कोनो भी लोग गीत सुने के फरमाइश किए ही। छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, आप भी कोनो भी लोग गीत सुने के फरमाइश किए ही। गौतम नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोदले आरती नांदेड़, आप भी कोनो भी लोग गीत सुने के फरमाइश किए ही। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी सुरेंद्र चंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार, आप भी कोनो भी लोग गीत सुने के फरमाइश किए हैं। बनियापारा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, संध्या कुकरीजा, नीतू विनीता, उन्नति धनशानी, माही पूजा छुटकी डोडवाड़ी मखीजा और पूरा कुटुम्ब। और साथ ही गोसाईगंज से शशिलता, आप सब जो है बोला अपन बरात सजाए रहे, लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। तो आवे आप सबके पसंद पे सुना जाए ये लोकगीत।

सखियों पूरी उम्मीद है कि गणेश सगरो सखियन का नीक लाग हुए और जो फरमाइश किए हैं वे सब श्रोता जन एक सुने जरूर हुई हैं। और अगली फरमाइश हम लीत हैं चम चम चम के सूरज व पद्मा गिडवानी की आवाज में है ये लोकगीत। एक फरमाइश आई है शिवाजी नगर बडाली देशमुख से राजेश खोबर खेड़े शिव सागर इंदिरा ताई छकुली ताई खांडवी बुल ढापा से दीपा वली रामधाड़े स्वराज रामधाड़े आप फरमाइश किए हैं ये गीत के। और फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा लाड़ी खेड़ा विशाल शालिनी

इस्तीवा नाशी खेरा अभी कोनो भी लोग सुने के फरमाइश किए हैं थिलोरी अमरावती सुनैना और तनुज अभी कोनो भी लोग सुने के फरमाइश किए हैं ग्राम बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद वर्मा श्रीमती भागवत वर्मा अभिषेक वर्मा सीमा अमित सचिन मास्टर समर राज आर्यन बेबी आरोही ऐशिका अंजलि श्वेता वर्मा आप भी कोनो भी लोग सुने के फरमाइश किए हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम अंसारी साबिर अंसारी राही मेहराज जहां आप भी कोनो भी लोग सुने के फरमाइश किए हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर कैलाश मिस्त्री गोवर्धन धरा फरसाराम सोलंकी श्यामलला हान घनश्याम भार्गव बाबू और हसन सिक्का आप भी फरमाइश किए हैं यही गीत के चमा चम चमकी सूरजवा ये लोग गीत के फरमाइश किए हैं तो आवे आप सबकी पसंद पे सुना जाए ये लोग गीत

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
6: सखियों, उम्मीद है कि कार्यक्रम सबका नीक लागत हुए और गौने भी आपके फरमाइश के हमारा सभी श्रोता लोग सुनत रहे हैं। और अगली फरमाइश हम ली थे अपने कार्यक्रम में, गीत है मैं तो चंदा जैसी नार, स्वर है पद्मा गिटवानी के। ये गीत के फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। एक साथी यही गीत के फरमाइश आई है सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे। आप भी यही लोग गीत के फरमाइश किए हैं। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुकमान बघेल, साहिल भारती बघेल। आप भी यही गीत के फरमाइश किए हैं। शंकरपुर पोस्ट उसामा से जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव। आप भी यही लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही नेहा जूही, सोनम मिश्रा, निशा, अनूप, रवि, राज व इनके मम्मी पापा। आप अपने जगह के नाम ना लिखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप अपने नाम के साथ ही अपना पता भी जरूर लिख के भेजें। और साथ ही हम यूँ कहा चाहते कुछ लोग फिल्मी गाने का फरमाइश यह कार्यक्रम में करे थे, ई फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम है तो आप लोकगीतन का ही फरमाइश करें और वही का ही शामिल कर अब अपने कार्यक्रम में। तो और साथ ही फरमाइश आई है गाँव व डाकघर निमनाबाद जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जातिंदर कौर, गुरप्रीत कौर सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। आप भी कौनों भी लोगी सुने के फरमाइश किए हैं। हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से जगदीश धाकड़, नायमा और श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। आप भी कोनो भी लोकगीत सुनने के फरमाइश किए हैं तो अवे आप सबकी पसंद पे सुना जाए ये लोकगीत।

सखियों देखो बरसात के मौसम चलत है, ये मन स्वस्थ रहे और घर का सुरक्षित रखे के तार साफ सफाई बहुत जरूरी है, शुद्ध खान पान हुए, मच्छरन से बचाव बहुत जरूरी है और घर में पानी जमा ना हो दें, उबला हुआ पानी पिए, बाहर का खाना खाए से बचें और गीले कपड़े का और जूतन का तुरंत सुखावें, उका अपने तन पर ना रह दिए और कोशिश करें कि पानी जो है उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी पिए और पौष्टिक आहार लिए, ताजी सब्जी लें, नींबू लें, विटामिन सी से भरपूर फल शामिल करें और योग भी करत रहें। ये सब का ध्यान रखें, कैसे बारिश के मौसम में स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इमन अपने शरीर का स्वस्थ रखे बदे थोड़ी थोड़ी चीजन का ध्यान रखें ताकि हमें सभी स्वस्थ रह सकी। साथे में हो कहा जाए थे कि घर के खिड़की और दरवाजे का ठीक से रखें ताकि बारिश के पानी अंदर ना हो पावे, घर में नमी ना हो पावे और कोनो तरीके के ताकि संक्रमण न पैदा हुए। बिजली के तार के भी बात करब हम कि घर के अंदर के खुले या कटे हुए बिजली के तार के जांच करत रहे ताकि कोनो तरीके दुर्घटना न हुए। और एक साथ ही हम लीत है अगली फरमाइश अपने कार्यक्रम में, गीत है हमारे भाई नंदलाल सुषमा गुप्ता और सखियन की आवाज में। ये गीत के फरमाइश आई है फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी के सुरेश चौरसिया और श्रीमती सरोज चौरसिया से। आप जो है ये लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही अगली फरमाइश आई है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत। आप भी जो है आप कौनों भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही फरमाइश आई है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, महिरा नूर। आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही फरमाइश आई है जो है मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, सहजान अब्बासी, नवेज हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशब अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी। आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही फरमाइश आई है कोहका भिलाई, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला, अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। और साथ ही फरमाइश अगली आई है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम। आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही फरमाइश आई है अगली जिला छत्रपजी संभाजीनगर महाराज से, अनिल कुमार घोट से, वैशाली अनिल, प्रजाक्ता घोट से, वैष्णवी घोट से, गायत्री घोट से, यज्ञेश घोट से। आप भी कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। तो आवे आप सबके पसंद पे सुना जाए ये लोकगीत।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह आदि कोनो भी लोग इस वेकट

क्यों पूरी उम्मीद है कि जो लोग गीत हमारे सखी लोग सुने हैं, जन श्रोता जन सुने हैं, जन फरमाइशकर्ता लोग सुने हैं, उनका नीक लाग हुए। और देखो भाई, बात तो बहुत कुछ करे मन का था, लेकिन घड़ी इशारा कर है कि कार्यक्रम से विदा लेके भी समय हो गया है, तो हर काम समय से ही अच्छा लागत है। तो यही वादा के साथ है कि अगले नए कार्यक्रम में नीक नीक गीत को नई और जानकारी के साथ फिर भेंट मुलाकात हुई। तब तक की तय वंदना का दे मती नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम अंगना। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम

0: कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टारडस्ट क्यों कहते हैं?

0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम।
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात

0: रात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
1: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं। और फिर उन जगहों

0: भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं, मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे है ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: एक कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह, ये भी
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।

0: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
0: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी,
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
5: वो आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकल कर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
2: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कहाँ जाऊँ मैं, ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़,

ही अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा। मैं वो पेड़ आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए। लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप

0: गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
0: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
1: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक क्या है, इसको जलाकर देखा जाता है।
0: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
1: अच्छा
0: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
1: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
0: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है
1: कि कैसे इसको रखना है और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
1: बिल्कुल।
0: ये हाथ से और मेहनत से
1: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
0: मुझे मालूम था आप कहने वाली हैं।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कॉम्पिटिशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं।

0: है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सके, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता
0: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा हमने। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है, वो कोई भी प्रतियोगिता।
0: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत
0: जी।
1: अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, जी, भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने। तो बात करते हैं, पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन गोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात,
1: बहुत शानदार बहुत शानदार।
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर

0: प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो। दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू। मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना?
0: मैंने कहा ना,
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना, आती बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा, घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें मतलब रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा, उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
1: तो अब पकौड़े बहुत खाली है, गीतों का आनंद
0: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सही।

0: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज की मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन की अभिव्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा

0: विचारों की विस्तारक होती है।
1: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
0: जी
1: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, तीन भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती है भाषाएं।
0: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
0: अच्छा।
1: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी, और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी, और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ, और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
0: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
1: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है, और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है, और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
0: जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
1: जी,
0: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिखकर के या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
0: जी,
1: हास्य भी मेरे अंदर था, और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा, और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
0: जी।
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
0: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के हमारे

0: के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला विंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ तो मैं और आगे लिखता गया।
1: जी, यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला।
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये। आइए सुनते हैं आप।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह है वो, और उनके

0: रचनावली की 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित है। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है। ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना
1: जी,
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों के पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3-4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का सनिदेव। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाए को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है और उसकी झलक आपको साहित्य के सनिदेव में मिलेगी
1: जी। तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं
0: जी? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में और हम व्यंगकार दावा करते हैं कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है, कबीर ने कहा।

0: तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतीय हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: जी, और पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ बहुत बड़ा
1: जो वर्ग पढ़ा
0: था,
1: करता
0: हाँ,
1: था।
0: बहुत, हाँ बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है
1: जी। बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंगी है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की ट्रेनिंग, राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती हास्य डाला गया है या ये समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा

0: और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं हो पाया जी।
0: ऐसा लगता है कि व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें। वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित है, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वो विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए
1: जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता तो होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
0: चाहिए। उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश
1: जी, जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर, और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच
0: जी। जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना।

0: हरिशंकर जी,
1: जी,
0: तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां

0: एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है, तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी मंदाकिनी जी, ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा यह है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
0: जी,
1: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
0: जी, जी।
1: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
0: जी जी,
1: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
0: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं तो कई बार आपने देखा होगा

0: के जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
1: निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से।
0: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव, आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल

0: मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
0: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
0: जी
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा जी जोखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपने मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी में मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए
1: जी।
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम

अभी आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: मीडिया वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सुनिए जी, सुनिए, आपसे ही बात कर रहे हैं। क्या आपने 12th पास कर ली या घर में कोई 10th या 12th पास है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला में लाइए, जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पैकर स्किल्स, यश ITI, दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।
5: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
6: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
6: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
5: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
5: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी खूब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी के साथ है आपका दोस्त कृष्ण मणि पांडे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह। व्यक्ति विशेष में बात होगी डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में। और साप्ताहिक सेगमेंट खेल संसार में जानेंगे सप्ताह भर की महत्वपूर्ण खेल खबरों के बारे में। साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। साथियों, तो आज हम चर्चा में बात करेंगे वन महोत्सव सप्ताह की, जो प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक पूरे देश में उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया जाता है। यह सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और दायित्वों का स्मरण कराता है और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनकी सुरक्षा का संदेश देता है। दोस्तों, वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार है। वे हमें प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा असंख्य जीव जंतुओं का को आश्रय देते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और तापमान में वृद्धि पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुके हैं, तब वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं बल्कि मानव जीवन की आवश्यकता बन गया है। वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य था देश के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और वृक्षों के महत्व को जन जन तक पहुंचाना। आज यह अभियान पूरे भारत में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्राम पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण

कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता रैलियां, संगोष्ठियां, निबंध, भाषण तथा चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। दोस्तों, यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि लगाया गया प्रत्येक पौधा एक सशक्त वृक्ष बन जाए तो हमारा पर्यावरण अधिक स्वच्छ, हरित और संतुलित बन सकता है। आइए इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सभी यह संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और दूसरों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, हरियाली और स्वस्थ पर्यावरण की अमूल्य धरोहर बन सकता है। इसी संदेश के साथ हमारी यह चर्चा वन महोत्सव सप्ताह यहीं पूर्ण होती है।

दोस्तों आइए चलते हैं अपने साप्ताहिक सेगमेंट व्यक्ति विशेष की तरफ, जिसमें आज हम आपको ऐसे महान व्यक्तित्व से परिचित कराएंगे जिन्होंने चिकित्सा, समाज सेवा और राजनीति तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न से सम्मानित महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और जन नेता डॉक्टर विधान चंद्र राय की, जिनकी स्मृति में भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना तत्कालीन बांकीपुर में हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि उनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को उनके 80वें जन्मदिन पर ही हुआ। उनका संपूर्ण जीवन मानव सेवा, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण का अनुपम उदाहरण है। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी, अनुशासित और परिश्रमी थे। उन्होंने गणित में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्सा क्षेत्र को अपनाया, अपना जीवन लक्ष्य बनाया और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड के प्रसिद्ध सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल पहुंचे। प्रारंभ में उन्हें कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके धैर्य और आत्मविश्वास ने अंततः सफलता दिलाई। उन्होंने बहुत कम समय में मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन यानी MRCP और फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन यानी FRCS जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सीय उपाधियां प्राप्त कर इतिहास रच दिया। भारत लौटने के बाद डॉक्टर राय ने चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम बनाया। वे गरीब और असहाय रोगियों का निःशुल्क उपचार करते थे। उनका मानना था कि स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वे महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी रहे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय केवल एक महान चिकित्सक ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक और दूरदर्शी राजनेता भी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और 1948 से 1962 तक इस पद पर रहते हुए राज्य के विकास को नई दिशा दी। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास, कानून व्यवस्था की स्थापना और औद्योगिक विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में दुर्गापुर, कल्याणी और विधान नगर, साल्ट लेक जैसे आधुनिक नगरों का विकास हुआ। उन्होंने उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अनेक अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों

0: के विकास में योगदान दिया, जिससे लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई। डॉक्टर राय का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में निहित होती है। वे सदैव युवाओं को शिक्षा, अनुशासन, परिश्रम और सेवा का संदेश देते थे। उनका विश्वास था कि देश का भविष्य उसके जागरूक, स्वस्थ और शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है। दोस्तों, उनकी असाधारण सेवाओं के सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी बहुआयामी योगदान का राष्ट्रीय पुरस्कार था। उनकी स्मृति में बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया, जो चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। साथियों, आज जब हम आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तब डॉक्टर विधान चंद्र राय का योगदान और भी अधिक प्रेरणादायक प्रतीत होता है। उन्होंने सिद्ध किया कि एक चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करता बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी स्वस्थ दिशा प्रदान कर सकता है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लें और संकल्प करें कि हम भी अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव को सर्वोच्च स्थान देंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, यह थी जानकारी डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं।
1: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। आइए चलते हैं अपने अगले साप्ताहिक सेगमेंट खेल संसार की तरफ, जिसमें हम जानेंगे इस सप्ताह भर के प्रमुख खेल खबरों को। खेल खबर में सबसे पहले चर्चा करते हैं फीफा विश्व कप की। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में पिछले सप्ताह नॉकआउट चरण की शुरुआत हुई और कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। 28 जून को मेजबान कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। 29 जून को ब्राजील ने जापान को 2-1 से मात दी, जबकि पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया। मोरक्को ने भी नीदरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अगले दौर में जगह बनाई। 30 जून को फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया। स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने 2 गोल कर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से और मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर अंतिम 16 का टिकट हासिल किया। 1 जुलाई को इंग्लैंड, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमें अपने अपने नॉकआउट मुकाबलों के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।

अब फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें अंतिम 16 के मुकाबलों पर हैं, जहां खिताब की दौड़ और भी रोमांचक होने वाली है। पिछला सप्ताह महिला क्रिकेट के लिए अहम रहा, जहां आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण की तस्वीरें साफ हुई। इस सप्ताह भारतीय प्रशंसकों के लिए जहाँ निराशा हाथ लगी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टीम ने अपना दबदबा कायम रखा। 25 जून को ग्रुप स्टेज के एक मैच में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश वुमेन को 5 विकेट से हराया था। 28 जून को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत का सामना मजबूत ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम से हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर के शानदार छक्कों की मदद से 170 पर 4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया के एलिसे पेटी ने 56 और एस्ले गार्डनर ने 53 रन की कुल 106 रनों की साझेदारी की बदौलत यह लक्ष्य 19 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस 6 विकेट की हार और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के कारण भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम 4 में जगह पक्की की। ओवल मैदान पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वेस्टइंडीज के 125 पर 7 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवरों में 127 पर 2 रन बनाकर एक तरफा जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला मैच आज से शुरू हो रहा है। इस बहुप्रतीक्षित मैच में फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों की निगाहें टीम इंडिया पर रणनीति और प्लेइंग 11 पर टिकी हुई हैं। 15 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्रिकेट हलकों में काफी चर्चा है। पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी युवा प्रतिभाओं को लगातार मौके देने की वकालत की है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन की। विंबलडन 2026 का रोमांच लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में शुरू हुआ। टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में पुरुष और महिला एकल वर्ग के कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीय यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं महिला इगा स्वीकोतेक, आर्यना सबालेंका और कोको गाफ ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। हॉकी की बात करें तो 30 जून को हॉकी इंडिया ने बेल्जियम दौरे 5 से 18 जुलाई के लिए 22 सदस्यीय अंडर 21 टीम की घोषणा की। डिफेंडर अनमोल एक्का को टीम का कप्तान बनाया गया है। यह नए कोच फ्रेडरिक सोएज और मार्गदर्शक में टीम का पहला दौरा होगा। घरेलू हॉकी की बात करें तो कर्नाटक में प्रतिष्ठित 7वें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का शानदार आगाज हुआ। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। इस हफ्ते बैडमिंटन जगत में मुख्य आकर्षण यूएस ओपन 2026 का समापन और कनाडा ओपन सुपर 300 की शुरुआत रहा। भारत के दिग्गज शटलर किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। हालांकि वे उप विजेता रहे, लेकिन इस प्रदर्शन से उन्होंने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। 30 जून से कनाडा ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ। भारत की ओर से किदांबी श्रीकांत और युवा खिलाड़ी देविका सिहाग चुनौती की अगुवाई कर रहे हैं। जापान में 26 जून से बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप शुरू हुई, जहां तन्वी पत्री और अभिनव गर्ग भारतीय जूनियर टीम की कमान संभाल रहे हैं। दोस्तों, यह थी खेल संसार की इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें।

0: है। आइए जानते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल का कार्यक्रम होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद का, जिसका विषय होगा जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। दोस्तों, इस विषय पर आप हमें हमारे नंबर 7376804090 पर कॉल करके अपने विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। साथियों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं फिर आपके अपने इसी पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने इस दोस्त कृष्णमणि पांडे को। नमस्कार।
1: वाई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: सुनिए जी, सुनिए, आपसे ही बात कर रहे हैं।

आपने 12th पास कर ली या घर में कोई 10th या 12th पास है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला में लाइए, जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पैकर स्किल्स, यश ITI, दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवाणी एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
2: मम्मी मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
3: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम। अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए चंचल सांडिल की आवाज में ये अवधि लोक।

0: जगदीश त्रिपाठी की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये दादरा। कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
0: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। सरला सिन्हा की आवाज में सुनिए यह झूमर गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एई के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम शाम सवानी का। उसके पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना के अनुसार राजेंद्र बहादुर सिंह पुत्र नृपेंद्र नारायण सूचित करते हैं कि शिवशंकर सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह ग्राम पूरे शत्रुघ्न बहद गांव खंडासा जनपद अयोध्या 4 जून 2026 से कहीं लापता है। लापता शिवशंकर की उम्र लगभग 15 वर्ष, कद 4 फुट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा मजबूत शरीर, आंख और बाल काले और सामान्य है। लापता शिवशंकर सिंह के दाहिने आंख की भौं पर चोट का भी निशान है। लापता होने के वक्त शिवशंकर सिंह ने रेडीमेड शर्ट, आसमानी फुल बाजू और चमकदार हाफ पैंट पहन रखा था। जिस किसी को भी लापता शिवशंकर सिंह के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम शाम सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का नमस्कार।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: श्रोताओ, मौसम बदल रहा है ना। जी हाँ, कभी गर्मी और कभी बारिश। ऐसे में अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जरा सा भी चूके तो तबीयत खराब हो जाएगी।

श्रोताओं, मौसम बदल रहा है और बारिश हो रही है, तो ऐसे में इस बात का बहुत ख्याल रखें कि जब घर से बाहर निकले ना, तो आपके पैरों में कुछ हो जरूर, यानी जूते या चप्पल। ऐसा ना हो कि कोई जीव आपको पकड़ ले। सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को है। कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार क्लिक कीजिए, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: अनुपातः निर्धारितः अनेन सुनिश्चेष्यते यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत् केन्द्रीय मन्त्रिणो शिवराजसिंह चौहानः किरेन रिजिजू इत्येतौ अरुणाचल प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा पेमा खाण्डू इत्यमुना सह अद्य द्वितीय दिनेपि राज्यस्य जलाप्लावेन प्रभावित क्षेत्राणाम् आकाशमार्गेण निरीक्षणं कृतवन्तौ एतेन उच्चस्तरीयेन दलेन सर्वप्रथमं अत्यधिक प्रभावितस्य पूर्व सियांग जनपदस्य पासीघाट क्षेत्रस्य ततः परं च बोयिंग ग्रामस्य च आपत्स्थितेः प्रत्यक्षणं समीक्षणं विहितम् अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्री श्री चौहानः जलाप्लावेन पीडित नागरिकान् आश्वस्य प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारः राज्य प्रशासनेन सह पूर्ण समन्वयं कृत्वा प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः व्यापकं वित्तीयं संरचनात्मकं च साहाय्यं प्रदास्यति राज्ये एतावता चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः एकविंशति जनाः व्रणिताः समभवन् राज्यस्य अष्टाविंशति जनपदेषु नवनवत्यधिक चतुश्शतोत्तर 90,000+ जनाः अस्मात् प्रकोपात् प्रभाविताः सन्ति अरुणाचल प्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीय मन्त्रिणो चौहान रिजिजू इत्येतौ असम राज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्त क्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान् 31 सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीयसेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविधक्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे 48,100 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल ये 6,970 करोड़ रुपीस की है और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़ और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है एक्सेस कंट्रोल करना उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है
0: भारतीय ऋतु विभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति आगामि दिनद्वयोः उत्तरप्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भक्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य 16 तमे चरणे प्रविष्टवान् इति वार्ताः

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
4: मम्मी, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
5: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम, अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
6: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800-37-22-22।
0: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के सुनिए अंजनी कुमार और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
1: मम्मी मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
2: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम, अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
5: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
6: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
3: पंचो जय हिंद। पंचो जौने चीज के अपने सभी के इंतजार रहा यानी बारिश के आगमन। कहाँ कहाँ भैया पुरहर बारिश हो गया है, कहाँ कहाँ हल्का। देखा भैया बीच बीच में देखा, अब हूँ थोड़ी देर पहले बुनियाद रहा है कि मौसम देखा सुहावना हो गया है। कुल मिलाई के धान के बैठवाई भी चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे भैया जौन बाटे काम करे के जरूरत है। ये बात है कि अपने सभी के खेती किसानी जौन है ओका करे के ज़्यादा बढ़िया जरूरत है। पंचो लगभग सभी के बेरन लगभग तैयार है, धान के बैठवाई शुरू है। देखा अपने सभी पंच भैया खेती तो करत हैं, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये जमीन जौन बीमार यानी कमजोर हो गया है, यानी खेती योग्य जौन है। जौन कुछ खाद डाला जाता है वह ठीक से नहीं लागता है, फसल कमजोर लागत ज़्यादा। ई मान के चलें मुनाफा बहुत कम होता है। किसान भैयन का रुझान सही ढंग से नहीं लागता है कि खेती सही ढंग से करी। ये सबसे बचे बदे समय आए पे जब जाना कि फसल खाली है वह समय खेत के यानी कि माटी के जांच कराओ बहुत जरूरी है। हे भैया बिना माटी के जांच करवाए खाद ना डाला, आगे के खातिर पहले से सचेत रहे की जरूरत है। माटी के जांच से पता चल जाता है कि खेत में कौन कौन पोषक तत्व तो मौजूद बा और कौन कौन चीज ना बा, दोनों पता लाग जात भैया। साथ ही साथ यह पता चल जात है कि माटी अम्लीय बा या फिर क्षारीय बा सामान्य। पंचो ये सब जानकारी भए के बाद किसान जरूरत के हिसाब से खाद डाल सकत हैं, फसल नीक होए, अनायास खर्चा से बचे का है। हे भैया माटी के जांच करवाए से फसल अच्छी और उत्पादन बढ़िया बढ़त है, दाना अच्छा भरे गुणवत्ता भी बढ़त है के। तो ऐसा में पंचो जागरूक होए के बहुत जरूरत है, काहे से कि सरकार के जौन महानो योजना है वो सब पता चल जात है। देखा सरकार किसानन का मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी साइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करावा जात है ना। हर किसान भैयन के कर्तव्य है फसल बोए के पहले खेत से माटी के नमूना लेके जांच करवा सकत है। सोच समझ कर करो किसानी का भैया, सोच समझ कर करो किसानी, थोड़े खेतन में भरपूर कमाओ, बस सोचे समझे जागे के जरूरत है। हे भैया आगे के खातिर पंच भैयन का आगाह कीन जाता है, अंधाधुंध जोन रासायनिक खाद पंच भैया डालता है अनायास कितना खर्च हो जाता है, वो फसल में नहीं लागता है। ये सब बातन पे जरूर अमल करे के जरूरत है। खेती किसानी में बहुत खर्चा बैठत है ना, खेती में पूंजी लागत है। किसान भैयन का चाहिए KCC यानी और फसल बीमा जरूर करवा ले चाहिए। पंचो सच में कहा माना ये बहुत फायदेमंद वाली चीज है। यह सोचत हुई है कि आखिर ये कैसने बनवाई, कैसने हमें काव करे पड़े, कैसने जानकारी होए, कैसने का होए, ये सब जानकारी हो बहुत जरूरी होते पंच भैयन का। ऐसने भैया हम एक ठी जानकारी लेके आवा है, भेंट वार्ता है KCC और फसल बीमा योजना विषय पे। एक जानकारी देवे जाता है गणेश शंकर यादव अग्रणी बैंक प्रबंधक अयोध्या, भेंट करता है राम प्रकाश पांडे भैया। चलो भैया इन्हीं से सुना जाए कैसे कैसे यहाँ लाभ मिलता है।
4: पंचो देखा अपने सब भाई कौनो काम करी थी ना तो हमें पैसा का जरूरत रहा था, कैसे मैंने कहा ना बिना पैसा का हो।

0: हर काम में मैंने ये पूछा था तुहार अवकात कितनी है, अंदाजे लागत है, तो ऐसे कुछ बात करते हैं। अपने बीचे में है आज अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या से श्री गणेश शंकर यादव भैया। तो सबसे पहले तो यादव भैया आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। अब आपसे भी जानना चाहिए थी ना केसीसी जैसे पहले पंच भैया का बनवाए का है या खास करके फसल बीमा योजना के लाभ लिए का है, तो हम अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या का मुख्य भूमिका निभाव दिया है।
1: जो भी सरकारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन जनपद में होता है
0: जी।
1: और इसमें हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जैसे खरीफ की फसल का समय अभी आ गया है, उसकी बुआई जो है आप लोग करने वाले हैं निकट भविष्य में, तो उसमें जो आपको धन की आवश्यकता होगी उसके लिए आप केसीसी का ऋण कैसे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप अच्छी बुआई कर सकें और अपनी फसल जो है अच्छी तरीके से वृद्धि करके और अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें।
0: बिल्कुल, कैसे कैसे कहते पंच भैया ये आप बताओ।
1: पहले ये बताना चाहेंगे कि विभिन्न फसलों के लिए केसीसी बैंक से ऋण देने का प्रावधान है जिसमें धान, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, तोरिया, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, गन्ना, आलू, मिर्चा, टमाटर, ये सब फसलों के लिए केसीसी दी जाती है।
0: अच्छा,
1: इसमें जो है हर साल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक होती है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि प्रति हेक्टेयर किस फसल पे कितना केसीसी बैंक निर्गत करेगी। तो खुशी की बात यह है कि पिछले वर्ष जो धान की खेती के लिए 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए वित्तमान निर्धारित हुआ था
0: जी,
1: कि एक हेक्टेयर के लिए धान की खेती के लिए 70,000 रुपए की केसीसी बनेगी, वो बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार आलू की खेती का बढ़ा करके 1,75,000 कर दिया गया है जो पहले 1,65,000 था। इसी तरीके से मटर का जो है वो 34,000 से बढ़ा के 42,000 कर दिया गया है। सरसों का जो है 39,000 से 45,000 कर दिया गया है। तो इसी तरीके से मशरूम का नहीं था, मशरूम के लिए भी वित्तमान निर्धारित कर दिया गया है जो कि 8,10,000 रुपए है।
0: अच्छा, तो ये तो हो गया कि एक रीता निर्धारित है
1: जी।
0: पंच भैया का अपन जाए और वह कहा ना कि जोन किसान के क्रेडिट हुए वही हिसाब से उनका पैसा मिलेगा।
1: हाँ, जैसी जो कितनी क्षेत्र पे आप बुआई करते हैं और किस फसल की बुआई करते हैं उस फसल के अनुसार जो आपके खसरे में लिखित होता है
0: जी,
1: उसके अनुसार बैंक निर्धारित करती है कि आपका कितना केसीसी बनेगा और उतना आपको दिया जाता।
0: बिल्कुल, ये करी था पंच भैया का काव करे पड़ते कैसे बैंक से जाए जुड़े का कागज लेके जाए का सावधानी बरते।
1: इसके लिए आपको अपना खसरा, खतौनी और आपका आधार कार्ड जो होता है वो लेकर के बैंक से संपर्क करना है। बैंक जो है प्राथमिक तौर पर आपके जो है खेती किसानी का रिकॉर्ड है उसको वो वकील के माध्यम से वो निकाल लेते हैं कि पहले से कोई लोन तो उस पे नहीं चल रहा है और उसके अनुसार फिर जो है वो आपकी फसल क्या बोते हैं उसके अनुसार आपका वो निर्धारित करके केसीसी निर्गत करते हैं। इसमें किसान भाई को ये भी बताना चाहते हैं कि जिनकी केसीसी पहले से चल रही हो वो भी अपनी केसीसी का समय पर नवीनीकरण करा करके और बढ़े हुए वित्तमान का लाभ ले सकते हैं।
0: मतलब का नवीनीकरण के पैसा जमा करके दोबारा ले लिए।
1: हाँ, नवीनीकरण का मतलब ये जो भी लोन अभी चल रहा है उस लोन को आप वापस कर दीजिए और उसके बाद फिर नया लोन आपको नए वर्ष के लिए फसल के लिए मिल जाएगा क्योंकि यह ऋण जो होता है केसीसी वो सिर्फ एक वर्ष के लिए होता है
0: जी।
1: 5 साल के लिए केसीसी निर्धारित की जाती है जिसका लगातार 5 साल तक आपको नवीनीकरण कराना होता है। 5 साल पूरे हो जाने के बाद फिर आपका नया केसीसी बनता है, नए वित्तमान के अनुसार बनता है जैसा वित्तमान मैंने आपको विभिन्न फसलों के लिए भी बताया है।
0: बिल्कुल, एक बात सही कह दी, बात केसीसी के करते ही तो केसीसी पंच भैया पशुओं पर तो पालते या पर सब पर बहुत तो बन जाते।
1: हाँ,
0: कि ना
1: ये बात बहुत अच्छी आपने की
0: जी।
1: पशुपालन के लिए और मछली पालन के लिए भी केसीसी का ऋण होता है और का बहुत खुशी की बात ये है कि हमारे जनपद में जो है वो 2 पशु के लिए अभी 1,60,000 एक वर्ष के लिए केसीसी निर्धारित हो गई है इस वित्तमान में।
0: भैंस की तरह गाय भैंस की तरह दोनों तरह
1: भैंस और गाय दोनों के लिए ये।
0: अच्छा,
1: हाँ, 2 पशु के लिए 1,60,000, इसी तरीके से 10 पशु के लिए 8,00,000 प्रतिवर्ष के लिए केसीसी आप।
0: बिल्कुल, यदि पंच भैया अगर करत है पशुपालन तो वही ना सोचे केसीसी ना बने, वही लगाए के वही पे ना पशुओं के की कितना इनके लागत आती है और वही हिसाब से उनके क्रेडिट तय करके केसीसी बना दी।
1: हाँ, ये केसीसी पशुओं को चारा खिलाने के लिए है ना कि नए पशु खरीदने के लिए है। नए पशु खरीदने के लिए अलग से कृषि ऋण होता है, उसका अलग से निर्धारण होता है। ये सिर्फ चारा खिलाने के लिए, अगर आपके पास 2 पशु हैं तो 1,60,000 रुपए आपको लोन मिलेगा जो वर्ष भर चारा खिलाने के लिए पशुओं को दिया जाता है।
0: बिल्कुल, जैसे खेतिया में वो इतना केसीसी मिलती है।
1: हाँ,
0: कि नहीं ना कि खेत खरीद एक टाइम मिलती। हाँ, है
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, जोन बोआई

0: ताई वही साधन रहा, वह खवावे ताई यही साधन है। सरकार के मनसा एकदम स्पष्ट है। अब दैया संजोग अगर मान लिया कि कहियो तो है पाला परा, कोहरा परा या बरसात हो गए, बहुत तेज आंधी चलिए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वहाँ है वो कै पंच भैया लाभ कैसे पा सकते थे, वो का करा यो के बारे में बताओ। कैसे पंच जनते ना सोचे हम केसीसी ले लिया, अब तो हमारा बीमा होगा, ऐसा ना है ना, कैसे है ये बताओ आप।
1: हाँ देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा एक बहुत अच्छा बीमा है, जैसा कि अभी बताया है भाई साहब ने, कि इसमें अगर बाढ़, सूखा, जल भराव या आकाशीय बिजली हो गई या ओलावृष्टि हो गई या बेमौसम बारिश हो गई और आपका नुकसान हो गया फसल का
0: जी,
1: तो उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति फसल बीमा योजना के तहत की जाती है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी केसीसी हो रखी है, बैंक उसका स्वतः का बीमा कर

0: होता है कि जितनी भी केसीसी हो रखी है बैंक उसका स्वतः का बीमा करता है। उसका निर्धारण प्रतिवर्ष जो है भारत सरकार के माध्यम से उसका निर्धारण होता है कि एक हेक्टेयर पर कितना बीमा की धनराशि जो है वो ली जाएगी
1: है।
0: उसका प्रीमियम कितना होगा जो आपके खाते से कट के जमा होगा
1: है।
0: और इस प्रकार का कोई भी नुकसान होने पर स्थानीय सरकार यानी राज्य सरकार उसका निर्धारण करती है और वो आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। बताना चाहेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में रवि और खरीफ दोनों फसलों को मिलाकर अब तक किसानों को 27 लाख की क्षतिपूर्ति हो चुकी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे कि ये बीमा जो है वो आपकी फसल की बुआई से लेकर के कटाई के 14 दिन बाद प्रभावी होता है, यानी कि बुआई से शुरू हो जाता है
1: और 14 दिन में काटे तो लाख घरे में धाइन ले।
0: हाँ, वो काटने के 14 दिन बाद तक जो है वो प्रभावी होता है। मान लीजिए अब अपनी फसल घर नहीं ला पाए, काटने के बाद खेत में कोई नुकसान हो गया तो वो भी वो बीमा से कवर। बस एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपको नुकसान होता है तो आपको 72 घंटे के अंदर एक नंबर है 1444-7 उस पे फोन करके आपको जानकारी देनी होती है,
1: यानी 144-47
0: 144-47
1: बिल्कुल। पंच भैया का भी याद हो गए, ये लिए दोबारा नाव लियन है कि पंच भैया का 1444-7 या 144-47 जो भी याद कर पाओ, या 1444-4 है 7 ये पर पंच भैया का तुरंत सूचना दिए का 72 घंटा के अंदर। कहे जब नुकसान होता तो सहित आदमी दिमाग कम हो ही नहीं करत है कि नहीं, ये लिए पंच भैया का वैसा ही तीन नंबर नोट कर लिए का कि 1444-7 पर उन्हें फोन लगाए के बतावे का है।
0: इसके अतिरिक्त एक और चीज बताना चाहेंगे,
1: बताएं
0: कि इसके अतिरिक्त विभाग बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा होने पर स्वयं से भी जो है उसका सर्वे कराता
1: है। सामूहिक हो जाता है,
0: वो सामूहिक आपको उसका लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज होती है
1: जी,
0: कि मान लीजिए कि फसल कम हो रही, उत्पादन फसल का कम हो रहा है, तो अपर सांख्यिकी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसीलदार और लेखपाल के जरिए जो है वो एक क्रॉप कटिंग का बना हुआ है प्रोसीजर। उस क्रॉप कटिंग में देखा जाता है कि जो आपका उत्पादन हुआ है वो स्थानीय मानक के अनुरूप है कि नहीं। अगर वो उत्पादन स्थानीय मानक से कम होता है तो भी उसमें आपको क्षतिपूर्ति का लाभ।
1: वाह भाई, तो बढ़िया है। क्या मतलब कि तुहार कम भवा तो तुम्हें बराबर पैसा मिले चाहिए और वही बीमा के लाभ तब तू का मिली। और हाँ, और का और हाथ है,
0: और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान भाई हैं वो इस वर्ष फसल नहीं बो रहे हैं या कोई और कारण है जिसके कारण वो फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहते, फसल बीमा नहीं कराना चाहते, तो उनको बैंक की शाखा में जाकर जहां उनका केसीसी ऋण चल रहा है एक एप्लीकेशन फॉर्म वहां मिलता है, वो भर के देना होगा कि भाई हमको बीमा ये नहीं कराना है। और उसमें फिर बैंक जो है एक प्रक्रिया करती है ऑनलाइन, वो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, आपको वो ओटीपी बताना होता है। इसको ऑप्ट आउट बोलते हैं। ऑप्ट आउट हो जाने पर ये होता है कि भाई हमें फसल बीमा नहीं कराना है। कारण कुछ भी हो सकता है आपका, मान लीजिए आपने फसल नहीं बोई है इस साल या और आप उसको कवर नहीं कराना चाहते हैं तो ये आपको कराना पड़ेगा। इस स्थिति में आपके खाते से कोई भी बीमा का प्रीमियम नहीं कटेगा।
1: बिल्कुल,
0: अन्यथा जो है बैंकों को ये निर्देश है कि बैंक इस हर केसीसी खाते में प्रीमियम की धनराशि काट करके और उसको बीमा कंपनी को भेजेंगे, जिससे सारा का सारा जो है हमारा कृषि आच्छादित क्षेत्र जो है वो बीमित रहे।
1: बिल्कुल, तो ये तरीके से चलत चलत जोन पंच भैया आपका रेडियो सुनता, उनसे आप का कहा जाइए?
0: उनसे बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो बड़ी संख्या में आप सरकारी योजना का लाभ लेते हुए अपनी केसीसी कराएं, जिससे आप जो है खरीफ की अच्छी बुआई करें और अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त करें। अपने ऋण को 365 दिन के भीतर केसीसी ऋण का नवीनीकरण अवश्य कराएं। ऐसा कराने पर आपको 3% ब्याज में छूट मिलती है, तो इस छूट का अवश्य लाभ उठाएं। अगर हमारे किसान भाई जो किसी कारण से उनका लोन खराब हो गया है, बैड लोन जिसको एनपीए बोलते हो गया है, तो आगामी जो भी लोक अदालतें हमारे यहाँ होती रहती हैं हर 2-3 महीने पर, उसका लाभ उठाते हुए अधिकतम छूट प्रदान करके ऋण के बोझ से मुक्ति।
1: बिल्कुल, आप रहे गणेश शंकर यादव भैया, अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या से केसीसी और फसल बीमा की योजनाएं, अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या के द्वारा काव काव मिलता है, यह सब विषय पर इतनी बढ़िया जानकारी दी। निश्चित पंच भैया अगर जानवर रखे हैं तो वो कई केसीसी या खेती में उनका जोन फसल आप बताएं कि तमाम फसल के नावलिन सब पे ऐसा ही बढ़िया है धनराशि, तो आप नवीनीकरण कर रही है तो बड़ी धनराशि के फायदा वह निश्चित पाई है। आप हमारी पंचायती में इतनी बढ़िया जानकारी दीन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हे भैया, अब इनके जोन जानकारी लीन जात रहा, भेंट वार्ता रही, केसीसी और फसल बीमा योजनाएं विषय पर।

का जानकारी देते रहे श्री गणेश शंकर यादव भैया, अग्रणी बैंक प्रबंधक अयोध्या, बतियात रहे राम प्रकाश पांडे भैया। देखा भैया, इमें खास कह के बात तो ये है, यहरी वाहरी मनई जोन बाटे कर्जा लेते है, तमाम चीज परेशानी हुआ था कि ब्याज पे ब्याज तमाम चीज देवे पड़ा था कि दिक्कत आई जात है कि, तो जोन केसीसी और फसल बीमा बाटे पंच भैया का करवाए नहीं, कहूँ जाए के जरूरत नहीं है, बैंक में जाए के सगरों चीज के पता सब लाग जाए, जोन चीज कागजात जोन चीज जरूरत हुए बनवा लिए, जब चाहें तब पैसा निकाल लिए, खेती में लगा सकते हैं, कोनो रोजी रोजगार धंधा करें वहाँ लगा सकते हैं, कहा मतलब अगर रिस्क लीन जाए तो भैया वहीं में से दो चार पैसा आए, मेहनत करके कमाएं और वहीं में जमा करें, तो उससे ज्यादा सुकून मिला था कि हम तो कहीं हाथे पर हाथ धरे न पंच भैया बैठा रहे, सोचें समझें जागे की जरूरत है, अगर मेहनत लगन से कौन चीज ठान लिया हम ये चीज करे का है तो सफलता अपने आप पैर चूमे, बस जागरूक हो के इना है कि भैया कौन चीज कहाँ क्यों कहे हुए, थोड़ा समझदारी कैला कि भैया ये कैसे किया है कि तुम्हें इतना लाभ मिल गया है कि, तो पूरी सगरों महानों जानकारी मिल जात है कि, तो पंच भैया से हम तो यह कहा कि जौन बाटे जानकारी के लाभ जरूर उठावें, कहे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है जरूर उठाई है। पंच भैया देखा हम तो ये कहे थे कि जैसे खेती किसानी के साथ साथ है, देखा पानी के कितना महत्व है, अगर खेती में पानी ना मिले तो समझ लो सब बेकार है, पानी के हर जगह चौतरफा महत्व है, कुल मिलाई के हम तो यह कहा कि जोन बाटे पेड़ पौधा लगावा, पेड़ पौधा कितना पुण्य के काम है, कितना लाभकारी है, एक पंच भैया सब जानता है। देखा पंचो कहा गवा है स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन, ये तब संभव है जब पेड़ पौधा खूब लगाए जाए, पेड़ पौधा हम सभी के जीवन में बहुत जरूरी है, बिना पेड़ के इंसान और जानवर के जीवन संभव नहीं है। पंचो ये जोन बारिश होत है ना, बरसात लावे में पेड़ पौधन के बहुत बड़ी भूमिका होत है, जोने इलाका में देखा ज्यादा पेड़ पौधा होत है वह वातावरण ठंडा और साफ रहा है, पेड़ मिट्टी के कटाव रोक के जमीन के नमी बनाए रखा थे। हे भैया देखा ये जुलाई के महीना चलता है ना, शुरू हो गया है बरसात के मौसम, खास करके जुलाई के महीना पौधा रोपण के अच्छा समय यह माना जाता है, खेत के मेड़ पे या बाग बगीचा स्कूल सड़क किनारे और खाली जमीन पे पेड़ लगाए सकते हैं, जोने में आम भय देखा नीम पीपल बरगद शीशम सहजन यानी कि जामुन और अर्जुन देखा और फलदार पेड़ लगाए के बहुत मुनाफा कमावा जा सकता है, आगे चल के जोन पीढ़ी लागा है उन्हों के लिए फायदेमंद होता है कि ये लगावे चाहिए भैया, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसके देखभाल करब बहुत जरूरी है। पंचो देखा समय समय पर पानी देख पड़े, जानवर से बचाव करे पड़े, खाद देख पड़े, यानी कि पर्यावरण बचाव में हम सभी के पंचन के जिम्मेदारी है, पेड़ लगावे के यह महीना यानी बरसात में भैया ऐसे बढ़िया और कौनो ना है, वृक्ष हर माने में फायदेमंद और गुणकारी होत है के, देखा मनई का सोचे समझे का है, हरा पेड़ पौधा बिल्कुल ना काटे का है, अब देखा कहा गवा है वृक्ष भी संवेदनशील होते, प्रकृति के साथ छेड़खानी न करा भैया, पेड़ लगावे पर्यावरण बचावे का है, तब सुख और चैन की जिंदगी जी मिले। हे भैया पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, अपने धरती का स्वर्ग बनावे का है, जीवन को बचाना है अगर हर दिन वृक्ष लगावे का है, हर दिन का मतलब भैया क्यों न क्यों सभी पेड़ लगावे चाहिए, अपने आरी बगल पास पड़ोस में कुछ न कुछ लगाए रहबा तो उसे बड़ा सुकून मिले। देखा एक आदमी काम नहीं है, सभी पंच का काम है कि एक आदमी से काम चले वाला नहीं है, अगर सब हिल मिल के काम करिए सगरों समस्या का निराकरण हो सकता है। जोनी मेर से भैया कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण में ज्यादा हो चली जाता है तो आखिर का हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा सही ढंग से नहीं मिल पावता है ना, एक एक कारण सबसे बड़ा यह है अपने सबके कमी है, अपने सब पेड़ पौधा अगर लगावा हिल मिल के हर चीज जोन बाटे चारों तरफ दुरुस्तीकरण हरा भरा दृश्य बना रहा है और जोन बाटे कितना बढ़िया सुहावना मौसम बन जाता है कि, और ओकरी बाद समय समय पर बारिश होए आंधी तूफान या जोन समय समय बाढ़ आई जा सूखा पड़ जाता ही ना होए, समय से हर वातावरण संतुलन बनाए रखे कुल मिलाई के, देखा पेड़ पौधा लगाऊबा तब सही ढंग से बारिश होए, काहे से देखा बारिश के मौसम कितना मदमस्त होत है कि आनंददायक होत है ना, बरसात के लुभावनी बहार अरे भाई हम सभी के दिल का मोह ले था ना, बरसात के मौसम के अंगड़ाई बार बार कुछ कही बैठा था, एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में अपने नंद से दिल के बात काव कहते हैं, तनी सुना जाए

भैया तोहरे काहे नाही आए छोटी ननदी। देखा भैया अपने का के ना याद करत, सब केहू याद करत है। समय समय के हर बात होत है के, हर चीज पे ध्यान देख पड़त है के। देखा मौसम के अंगड़ाई, मौसम के मार से हर चीज जोन बाटे, सब कुछ परिवर्तन अपने आप होए लागत है के। समय के

अनुसार हर चीज काम करे परत है। देखो भैया, पंच भैया जैसे खेती किसानी करत हैं, जौन कुछ पैदा होत है वह पर जानकारी रखत बहुत जरूरी होत है कि जगह औने पौने के चक्कर में ना बेचे चाहिए। अयोध्या मंडी से बाजार भाव तनी अहमेर से आवा है। चावल कामन 3,100 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से, गेहूं दड़ा 2,550, मक्का पीली 2,360, उड़द दाल काली यानी कि 9,400 रुपया कुंतल है भैया। देखा आप, चना देसी है 6,500, मसूर 7,200, अरहर दाल 11,000 रुपया प्रति कुंतल है, आलू सफ़ेद की है 8,000 यानी कि 880 रुपया प्रति कुंतल भैया, प्याज लाल है 1,800 रुपया, टमाटर 2,800 रुपया, लहसुन 7,250 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से, तरोई यानी कि 1,200 रुपया, खीरा 1,900 रुपया, बैंगन 1,800 रुपया, हरी मिर्च भैया 2,750 रुपया प्रति कुंतल, कद्दू जोन है 900 रुपया, अदरक 9,000, शिमला मिर्च 3,700 रुपया प्रति कुंतल, भिंडी 1,700 रुपया, लौकी 1,190 यानी करेला भैया 1,800 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से है। केला पक्का जोन है 2,000 यानी 890 रुपया, नींबू 5,800 रुपया, पपीता 2,800 रुपया, सेव यानी कि 12,270 रुपया, अनार 8,000 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से है। यही साथ देखा आम जोन है 3,700 रुपया, गुड़बट्टी 5,240 रुपया, चीनी 4,150 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से। लगे हाथ मौसम के जानकारी जोन मिला है भैया, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जोन मिला है। अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 83%, न्यूनतम आर्द्रता 56%, यानी कि हवा की गति 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा की दिशा दक्षिणी पूर्वी, वर्षा 2.4 मिलीमीटर कुमारगंज में भैया। आगामी 24 घंटा के बारे में यह अनुमान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने बादल छाए रहे, साथे साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की और हल्की से मध्यम वर्षा हो एक संभावना पाई जाता है। देखा भैया, हम तो कही थे समय से अपन खेती करे, सब कुछ करे, वही माँ सब कुछ मिला था के, लेकिन समय के ध्यान देख चाहिए, समय से खेती करवा और जौन बार रोग भी आज कम लागत है के, जब देर के बोईबा तो हमारा जौन बाटे तमाम महानों बीमारी पकड़ा था के, यही लिए हर चीज पे बहुत ध्यान देख पड़ा था के। हम तो पंच भैया से यह कहा, जैसे बरसात के आगमन अब शुरू हो गया है, धीरे धीरे सख्तों बरसात है, फिर धीरे धीरे और बरसे आगे, अपन जौन काम करे का है वो चीज करे का है। अब जैसे बाहर निकले लागा, एक ठीक छाता ले ला, और मान लो बारिश होत रहा है, डंडा ले ला, टार्च ले ला, ये सब पे कुछ चीज महत्वपूर्ण चीज है, ज्यादा ध्यान देख पड़ा था कि देखा भैया घड़ी तनिको कोर कसर नहीं छोड़ता है, पल पल तनिक इशारा यह करते जाता है, फिर कबो नई नई जानकारी गीत गौनई के साथ मिला जाए, तब तक के खातिर हरि भैया का आज्ञा दें, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM बैंड 101.9 पर। अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। श्रोता आइए आपको बताते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी रात 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत कुंचन। 9:15 से कार्यक्रम होगा महफिले गजल। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह 8:15 से कार्यक्रम होगा सुर संगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विश्व खेल पत्रकार दिवस पर आज की बात के तहत चर्चा, नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडे की भेंटवार्ता, आधुनिक तकनीक के साथ नए आयाम गढ़ती आज की पत्रकारिता। 9:00 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर

प्रसारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या। 12:30 से अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग और दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और दोपहर 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम होगा नारी जगत, जिसमें आप सुनेंगे वन महोत्सव सप्ताह पर चर्चा। गीतों भरी कहानी, विषय धरती का श्रृंगार वृक्ष। किचन टिप्स में जानेंगे स्वाद और सुगंध बढ़ाते पत्ते। कार्यक्रम जीवाणी का समय होगा शाम 5 बजे। कल है गुरुवार, यानी कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद। विषय है जंक और फास्ट फूड से होने वाली समस्याएं। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और शाम 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम सुहानी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन सकेंगे 6:30 से और 6:45 से कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जुलाई माह के कृषि कार्य विषय पर चर्चा। सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल की भेंटवार्ता। खरीफ सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन, आपसे बात किया आलोक गुप्ता ने। बाजार भाव और मौसम का हाल तो होगा ही। 8:15 से कार्यक्रम गीत गुंजन और 9:15 से महफिल गजल। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और श्रोताओं, रात 10:30 से, यानी कल रात 10:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM बैंड पर आपने ट्यून किया आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 7:18 हुए हैं। 7:20 से आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समाचार क्लिक कीजिए, बस थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल

0: एसआईटी की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी द्विराम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है, ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े, और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी जीराम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 150

0: 25 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VVG राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण।

0: श्रवण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है जयमाला कार्यक्रम में।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीत बद्ध किया हुआ ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

फिल्म अनोखी अदा का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत उदित नारायण के स्वर में।

उदित नारायण के स्वर में आप सुन रहे थे और प्यार हो गया फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के बोल थे। ये थी आज के जयमाला कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

विविध भारती पर प्रस्तुत है रागों पर आधारित कार्यक्रम राग अनुराग। आइए सुनते हैं शहनाई फिल्म का गाना मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत रवि का। ये गीत राग पीलू पर आधारित है।

रात पीलू पर आधारित ये गीत आपने सुना शहनाई फिल्म से मोहम्मद रफी के स्वर में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राग जय जयवंती पर आधारित फिल्म सीमा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, बोल शैलेंद्र के हैं, संगीत शंकर जय किशन का है।

आइए अब सुनते हैं राग पहाड़ी पर आधारित प्रेम पुजारी फिल्म का गाना किशोर कुमार के स्वर में। गीत लिखा है नीरज ने और संगीत है सचिन देव वर्मा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जो राग चारुकेशी पर आधारित है। फिल्म मिलन का ये गीत आवाज लता मंगेशकर की है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते, इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं, मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा, आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारें। काम काम काम, जब देखो काम, काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? हम्म, क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं, 50 बार कह चुकी हूँ, आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या? छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा शाम को फोन करूंगी।
1: अरे मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए।
0: क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजाकर आपके लिए? 2:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है।
1: बस इतने ही व्यंग्यबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जल्लीकट्टी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता?
0: जरूर किया जा सकता है। हाँ आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं।
1: तो फिर रुक क्यों गई? जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
0: कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई, एक दिन हो 2 दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पे लगा रहता है, दूसरा फोन पर। आप अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और इतनी प्रतीक्षा के बाद हाथ पल्ले क्या लगती है? निराशा। आप आते हैं 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और कभी उस समय जब लोग शाम की चाय पीकर घर घूमने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं, मैं भी तो आपके साथ घर या बाहर थोड़ा बहुत समय बिताना चाहती हूँ।
1: तुम ठीक कहती हूषा, मुझे तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, मगर तुम्हें भी तो मेरे प्रति थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारखाना प्लान कर रहा हूँ। कदम कदम पर इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें सामने आती हैं कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घुटन महसूस होती है, लगता है चक्के का पार्ट गले में डाल लिया है।
0: यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये चक्के का पार्ट गले में क्यों डाल लिया है? क्या इस नए बिजनेस के शुरू करने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे?
1: नहीं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे थे वो कुछ जिंदगी थी। छोटा घर, सीमित आमदनी, सब सुख सुविधाओं का अभाव।
0: हाँ, अब घर बड़ा हो गया है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, सपना तो कम से कम इस बात का देखा ही जा रहा है। सुख सुविधाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं, मगर अब घर के स्वामी को इस बड़े घर और इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवकाश नहीं है। भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
1: उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
0: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
1: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरी ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो।
0: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ।
1: मैं दिवा स्वप्न देखता?
0: हमारा विवाह हुए 14 वर्ष

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा स्वप्न, लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत।
1: हेलो, हाँ ये 54808 है। कौन? सुषमा। हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। कहो, अच्छी हो ना? और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। अरे बड़ी भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं।

0: हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे।
1: तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम कोई कोशिश नहीं की है?
0: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे। और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी, इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए, उसी निर्दय निर्मम धरती पर जहां गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी तंग और सीलमदार खोली थी, जहां दिन में भी कॉकरोच घूमते रहते थे।
1: हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी बैठ जाता है।
0: मैं कहती हूँ तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें अकर्मण्य होकर घर में छिपे बैठने के लिए तो नहीं कहती हूँ, नहीं मैं ये कहती हूँ कि तुम सपने मत देखो।
1: हो तो फिर तुम क्या कहती हो?
0: यही कि सपने देखो मगर दिवा स्वप्न नहीं। थोड़े से काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाओ और इस तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो। छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम लाख कोशिश करो, तुम एक महीने में धरती पर एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ें नहीं जमा सकते, और तुमने आज तक ऐसा ही करने की कोशिश की है।
1: मगर अजय तो कहता है कि योजनाएं बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी योजना तो मालगाड़ी की तरह होती है जो खिसट खिसट कर चलती है और कभी कभी तो छोटे से फासले को तय करने में महीनों लगा देती है। बड़ी योजनाएं सफल होने पर आदमी मिनटों में मालामाल हो जाता है।
0: आप मिनटों में मालामाल होने की भावना मन से निकाल दीजिए ना। मैं कहती हूँ क्या कीजिएगा मिनटों में मालामाल होकर, 4 रोटी की जगह आप 8 रोटी खाने लगेंगे। ये जो सूट आपने पहन रखा है इसके ऊपर आप दूसरा सूट पहनने लगेंगे।
1: नहीं, लेकिन तब मैं इससे बढ़िया फ्लैट ले लूंगा, घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य का अधिक सामान ले आऊंगा। जीवन की इस दौड़ में मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अजय कहता है।
0: ओहो, आप अजय भाई की बातों में।
1: ओहो, एक मिनट रुको, देखता हूं कौन आया।
2: हेलो
1: अजय। अरे भाई बहुत बड़ी उम्र तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था।
2: हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे याद कर रहा है। भाभी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अरे ये क्या, मेरे इंतजार में अभी तक खाना मेज पर ही रखा है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाई, आप लोग खा लेते, मैं तो घर से थोड़ा बहुत खाकर ही चला था।
1: मगर ये बात नहीं है अजय, खाना अभी तक न खा सकने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल हुआ ये कि घर में घुसते ही आज तुम्हारी भाभी मुझ पे बरस पड़ी।
0: अब रहने दीजिए ना अजय भाई।
2: ना ना ना ना, अजय भाई से कोई पर्दा ना रखिए। भाभी बताइए आज आपने अनिल को किस बात पर?
1: अच्छा अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। अजय तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ।
2: ठीक कहती हैं। मैं पूछता हूँ कौन दिवा स्वप्न नहीं देखता, और जो नहीं देखता वो क्यों नहीं देखता? ये दुनिया कायम ही दिवा स्वप्नों पर है। भाभी दिवा स्वप्न देखने वाला आदमी ही अपने दिवा स्वप्नों को साकार करता है,
0: जैसे आपके भाई साहब इन 14 वर्षों से साकार कर रहे हैं।
2: पिछली बातों को छोड़िए भाभी, जो बीत गई सो बीत गई, अब की बात कीजिए अब की। इस बार हम दोनों ने जो योजना बनाई है आप उसे सुनेंगी तो फड़क उठेंगी। क्या प्रोजेक्ट है। बस भाभी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के आकाश से धरती पर उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी।
0: अजय भाई एक बात बताएंगे?
2: हाँ हाँ, छोटी छोटी दो बताऊंगा, आप पूछिए तो।
0: इससे पहले आज तक आप ठीक इसी तरह के कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं?
2: ध्यान नहीं आता, मगर शायद 3-4 प्रोजेक्ट।
0: 3-4 नहीं, 30-40 प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं, और उनका नतीजा क्या हुआ है? लक्ष्मी के धरती पर उतरने की जगह आप अपने पार्टनरों को जिनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको आप धरती पर उतार चुके हैं।
2: इससे क्या होता है भाभी, इंसान अपनी असफलता से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। अब तक के अपने सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है जो मैं अनिल के साथ बना रहा हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है, ड्राइंग्स तैयार है, बस थोड़े फाइनेंस का प्रबंध और होना है, जिसके लिए अनिल और हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वो होते ही मशीनरी फिट हो जाएगी। इस पूर्णिमा को कारखाने का उद्घाटन होगा। और भाभी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। आप थोड़ा धीरा जाओ रखिए, बस 3-4 महीने में ही एयर कंडीशन कार होगी, बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे।

0: और हम सब लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़े।
1: ब्लू प्रिंट, ड्राइंग, प्लान, साइट, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, एयर कंडीशन, कार, वर्ल्ड टूर। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं
0: भाभी।
1: हाँ जय भाई, ये सब दिवा स्वप्न है, ये सब कागजी घोड़े हैं। यथार्थ की तेज हवा में ये आकाश में उड़ जाएंगे। अपने भाई साहब को इन झूठे सपनों में मत बहलाइए, उन्हें धरती पर ही खड़े रहने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा।
2: उषा, ये क्या कह रही हो तुम? अजय मेरा शुभचिंतक है, मेरे भले ही के लिए सब कर रहा है।
1: अजय भाई और शुभचिंतक? कब से 100 चूहे खाने के बाद बिलाव चूहों का शुभचिंतक बन गया? पूछिए तो जरा इनसे, आप जैसे कितने सीधे और भले दोस्तों का सर्वनाश अब तक कर चुके हैं। इन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या है? बस दोस्तों को सब्ज बाग ही दिखाए हैं, वही अब कर रहे हैं।
2: बस करो उषा, होश में तो हो तुम?
0: नहीं नहीं अनिल, भाभी को जो कुछ कहना है उन्हें कहने दो।
1: हाँ, आज मुझे जो कुछ कहना है मैं जरूर कहूंगी। मैं इतने दिनों से अपने पे बहुत जब्र कर रही हूँ, मगर अब बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अजय भाई, आप इन्हें एयर कंडीशन कार और वर्ल्ड टूर के दिवा स्वप्न न दिखाई। हम लोग जिस हाल में हैं, हमें उसी में रहने दीजिए। घी से चुपड़ी दो रोटी का लालच दे, हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसे भी हमसे मत छीनिए। आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए, और फिर आइंदा यहाँ आने और इन्हें अपनी मीठी बातों के फंदे में फंसाने की कोशिश न कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
0: जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अनिल। है
2: ये तुमने क्या किया उषा?
1: मैंने जो भी किया ठीक किया। भूल गए अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था? उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। एक महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या?
2: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

दिवा स्वप्न, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत कुंजन।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस

0: संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: कार्यक्रम गीत गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत गुंजन। आप जानते हैं, खुश रहने के लिए बस अपने आप को मनाना होता है। जब आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको यह महसूस करना है कि आपके साथ अच्छा पल कब बीता, अच्छे लोग कब मिले। बस खुश रहने का यही एक अच्छा तरीका है।

खुशदाम नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं और जब खुश होना होता है तो सकारात्मक की तरफ ही बढ़ना होता है। मन को समझाइए क्योंकि इसके समझने से ही सब कुछ होना है।

0: कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: हेलो
4: सुनो टेलीफोन नंबर
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
7: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
8: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
6: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
7: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
9: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

श्रोताओं, खुश रहने के लिए एक चीज और कर सकते हैं आप, अपनी गलतियों को सुधारें, ना कि उनको याद रखें। और एक बात, औरों पर भरोसा कम करें, खुद काम करना सीखें। खुद जब आप करेंगे तो अपेक्षाएं नहीं रहेंगी और खुशी रहेगी।

श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम गीत गुंजन का सफर हो रहा है पूरा। आप खुश रहें और मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। और एक बात, 9:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिल गजल, और 9:30 से होगा सजीव फुनिन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो।

0: से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

0: निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर

तालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए

0: 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम माफिले गजल।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: कार्यक्रम महफिल गजल में सबसे पहले लीजिए सुनिए केकी की आवाज में ये गीत।

0: केके की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये गीत।
1: मध्य क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़िया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com
0: अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में लीजिए सुनिए ये गजल।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सजीव फोन इन। हेलो अयोध्या।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
3: मुझे नौ लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
5: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
7: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com पर।
2: AYODHYA

0: shubhvani@gmail.com
1: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या
2: सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास
3: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार
2: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 8303921911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है कॉल करें 9596240042 और 7800037222
5: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838
6: जी हाँ श्रोताओं शुरू हो चुका है लाइव फन प्रोग्राम हेलो अयोध्या बस आपको मिला रहा है हमारा नंबर 7376 80 40 90 जी हाँ नंबर वही है और मिलाना शुरू कर दीजिए क्योंकि लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन लाइनें खुल गई हैं यानी कि सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या शुरू हो चुका है और मैं हूँ आज आपके साथ विवेकानंद तो कॉल करना शुरू कर दीजिए कॉल आ गई हेलो
7: हेलो हाँ सर नमस्ते
6: नमस्ते कौन बोल रहा है और कहाँ से
7: सर हमारीपुर जलालाबाद से तिरजे लाइट वाले बोल रहे हैं
6: क्या बात है आपकी बात हमसे पहले भी हुई है ना
7: कई बार हुई सर
6: यही तो बात है इसीलिए तो जो है अच्छा लगता है जब आप जितने श्रोता हैं वो बार बार फोन मिलाते हैं बातचीत करते हैं तो ये बताइए इस समय मौसम कैसा है वहाँ
7: जी
6: मौसम कैसा है
7: मौसम हल्का हल्का बूंदी पड़ रही है
6: अच्छा तो इसका मतलब मौसम ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में
7: मौसम ठंडा है पंखा चलाए बैठे हैं हल्का हल्का बूंदी पड़ रही है
6: क्या बात है तो आप अकेले प्रोग्राम सुन रहे हैं कि और भी लोग हैं आपके साथ
7: नहीं सब लोग खाना खाने में अकेले सुन रहे हैं नहीं तो जाना कहाँ बजा
6: वाह क्या बात है तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
7: जान पिक्चर के गाना सुना दिया
6: जान फिल्म का कौन सा गाना कोई भी
7: नादान पिया रे कौन सा गाना
6: कौन सा
7: नादान पिया रे
6: नादान पिया रे ऐसे तो बेमान पिया रे
7: हाँ वही नादान
6: ठीक है तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं सुनिए
7: ठीक
6: नमस्ते श्रोताओं आप भी हो सकते हैं कार्यक्रम का हिस्सा करना कुछ नहीं है बस मिलाइए फोन 7376 80 40 90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें लाइव फोन प्रोग्राम हेलो अयोध्या

0: लाइव फनी प्रोग्राम हेलो अयोध्या, कॉल लगातार आ रही है, बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर, चांदनी बोल रही है, गोंडा से।
0: देखो भाई, फिर से आज चांदनी का फोन लग गया। कितने दिन बाद लगाया चांदनी, ईमानदारी से बताओ।
1: आज हम सही नहीं बता रहे, कम से कम 15 दिन से ऊपर हो गया है।
0: 15 दिन, बहुत समय बीत गया ना।
1: जल्दी कॉल नहीं करते।
0: हाँ, ये तो हम समझ रहे हैं, 15 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। मतलब 15 दिन बर्दाश्त किया, ये बड़ी बात है ना।
1: नहीं, लग जाती है कौन सा, इसीलिए।
0: हाँ, अच्छा, हमें भी ये नहीं समझ में आता है क्या है। जैसे कुछ श्रोता कहते हैं मिलाते हैं, फोन नहीं मिलता है। अभी एक श्रोता से ऑफलाइन बात हो रही थी, और जैसे ही फोन हुआ उनका फोन डिसकनेक्ट हो गया। और लोग कहते हैं फोन मिलता नहीं, और कुछ लोग हैं जिनका फोन लग ही जाता है।
1: नहीं सर, हम तो कभी नहीं शिकायत करते, हमारी फोन बड़ी आसानी से लग जाता है।
0: हाँ, यही बात है ना, यही तो समस्या है। खैर, तो इस समय मौसम कैसा है वहाँ का?
1: हल्की हल्की बारिश हो रही है।
0: बारिश इधर भी हो रही थी, बारिश उस पार भी हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है बारिश।
1: और अब बारिश अल्लाह
0: जाने
1: भी
0: सुन
1: लेंगे बागी मूवी का।
0: बागी? अच्छा, देखें पहले है कि नहीं आज हमारे पास ये, क्योंकि इस तरह तो जो है गीत बहुत अच्छा पसंद किया वैसे आपने। देखते हैं। और बताइए क्या हाल चाल है?
1: और ठीक है, ठीक है। और आप कैसे?
0: हम बढ़िया, एकदम ठीक है। तो अकेले प्रोग्राम सुन रहे हो आप?
1: हमारे घर में अकेले ही सुनते, कोई नहीं सुनता। दीदी भैया सब। अब
0: तो ऐसा क्या हुआ कि फिर वो लोग सुनना बंद कर दिए?
1: नहीं, मतलब दीदी अपने ससुराल चले गए, भैया बाहर चले गए, अब हम अकेले रहते हैं, तो हम अकेले सुनते हैं।
0: ठीक है, बढ़िया है, सुनते रहिए इसी तरह आकाशवाणी अयोध्या, और फोन मिलाते रहिए आप। 15 दिन बहुत बहुत होता है, हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो आपके पसंद के गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए। नमस्ते श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन। जी हाँ, नंबर वही है, कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं, नंबर वही है 73-76-80-40-90।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अध्या। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: नमस्ते,
0: कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: रिंकी यादव, विक्रम जोशी।
0: ये सबकी कॉल दोबारा से कैसे लग जाती है? हेलो। हाँ, हम कहे कि कोई आप लोग मैजिक करते हो क्या? कोई मैजिक, जादू?
1: नो सर।
0: नहीं? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप क्या करते हो ये बताओ?
1: सर कुछ नहीं करते हैं। अब
0: पढ़ते हैं? किस क्लास में?
1: नहीं, पढ़ चुके हम।
0: पढ़ चुके हैं? कौन सी पढ़ाई आप कर चुके हो?
1: बीए फाइनल।
0: तो क्या कुछ सोचा नहीं है करने के लिए आगे?
1: नहीं सर, सोच रहे थे।
0: क्या कुछ? हेलो।
1: हाँ सर।
0: हाँ, पहली बात तो अपने से रेडियो को आप दूर कर दीजिए, हमारी और आपकी बात होगी और लोगों को सुनने दीजिए, है ना? कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा बताइए?
1: राजा हिंदुस्तानी।
0: राजा हिंदुस्तानी का कौन सा गाना सुनवा दें?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: तो आप अकेले प्रोग्राम सुन रहे हैं और भी लोग हैं आपके साथ?
1: नहीं सर, बाहर पापा जी सुन रहे हैं।
0: हाँ वही तो हम कह रहे हैं, और आप बार बार रेडियो के पास, आप ट्रांजिस्टर के पास पहुंच जा रहे हो, है ना? इसी की वजह से क्या हो रहा है कि आवाज जो है वो इको हो रही है। तो कितने वक्त से आप सुन रहे हो प्रोग्राम आकाशवाणी की, ये बताओ?
1: सर पापा सुनते हैं तो हम भी साथ में बैठकर सुनते हैं।
0: अच्छा, तो इस समय फोन कौन मिलाया? आपने मिलाया कि आपने आपके पिताजी के कहने पर?
1: नहीं, हमने मिलाया, आज पहली बार लगाया है।
0: पहली बार लगा। अरे हमें तो लगा जैसे विक्रम जो से एक और कॉलर है, बार बार उनका फोन भी बहुत लग जाता है, हमें वही लगा था। चलिए ठीक है,
1: आज पहली बार लगाया।
0: वाह, तो कैसा लग रहा है पहली बार फोन मिला के?
1: सर बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार लगाया, लग गया आपके पास।
0: और बात भी हो गई ना?
1: बात जो है बहुत लोग बहुत दिन से लगाते पर लगता ही नहीं।
0: हाँ ये बात तो है, बहुत लोग ये बात कहते हैं। तो ठीक है, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, सुनिए इसको।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम। श्रोताओं, आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। जी, करना कुछ नहीं है, नंबर वही है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, 73-76-80-40-90। उठाइए फोन, कीपैड पे टच करना शुरू कर दीजिए।

0: श्रोताओं एक कॉल लगातार आ रही है, बात करते हैं इनसे। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाए हैं? अपना कुछ नाम पता बताइए।
1: अयोध्या से सर, सौरभ।
0: अयोध्या से कहाँ से बोल रहे हैं?
1: महोबरा बाजार से सर।
0: तो प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी के?
1: हाँ सुनते हैं सर।
0: कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: बस यही सर, जो 9:30 से 10:30 आता है यही सुनते हैं।
0: अच्छा, तो आज पहली बार आपकी कॉल लगी कि इसके पहले भी लगाए?
1: नहीं सर, एक बार पहले भी लगी।
0: तो आज कैसा लग रहा है, दूसरी बार आपकी कॉल लगी है?
1: अच्छा लग रहा है सर बहुत। हम तो अभी कल रेडियो अपनी बनवा के लिए, हमारे दादाजी की रेडियो है, 1989
0: की है। तो ये तो और अच्छी बात है। तो इसका मतलब दादाजी भी आपके साथ सुनते होंगे? ठीक किया आपने, जो पुरानी स्मृतियां हैं उनको बचा कर रखा है आपने। कौन से फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: तो हम सुनेंगे, फिल्म का नाम तो हमको नहीं याद है सर, वो जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, एक गाना है सर।
0: जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कोशिश करते हैं हम आपके लिए इस गीत को निकालने की। अच्छा एक चीज हमें बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम इंजीनियर हैं सर, राम जन्मभूमि।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपके साथ तो बहुत अच्छा है।

0: बढ़िया, जब चाहिए तब जाइए, दर्शन कर लीजिए। क्यों
1: जी?
0: हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। तो देखते हैं, आपकी पसंद का गीत मुझे याद तो आ रहा है कि है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कटी पतंग का है ये, मैंने भी देख लिया जिस गली में है, अब देखते हैं। और बताइए, आप अकेले कि और भी लोग आपके साथ, कि मतलब केवल दादाजी के बाद आप ही प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ, हम ही सुनते हैं।
0: अच्छा, कोशिश में है लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये गीत आज आपको सुन पाएंगे आप। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उम्मीद बहुत कम है क्योंकि मुझे गाना फिलहाल नहीं मिल रहा है। और कोई फिल्म का गीत आप चाहते हो तो बताएं। हेलो,
1: नहीं ये सब तो कोई सा भी शुरुआत दीजिए।
0: और भी लोग हैं आपके साथ, आपके पीछे?
1: हाँ, हमारी भी वाइफ है, तो बोल रही है कि उससे शादी करने का जाना है।
0: हाँ,
2: वो गाना है मुझसे शादी करोगी, और ये उसी मूवी का है, नाम भी है और गाना भी सेम ही है।
0: हाँ, ये तो है लेकिन मुझे आपका गाना मिल गया है, पुराना वाला ही।
2: तो
0: पुराना वाला ही बजे। क्या बात है, ये बढ़िया है कि पसंद ठीक है अलग अलग, लेकिन जो पहले पसंद किया था वही सुनना है। ठीक है, आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: थैंक यू।
0: ओके, श्रोताओं आप भी कर सकते हैं फोन, करिए फोन, बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, गाने ढूंढेंगे, गाने बजाएंगे, मौज करेंगे। सजी फोन इन कार्यक्रम। हेलो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष।

0: श्रोताओं लाइव फनी प्रोग्राम हेलो अध्याप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से। एक बात जानते हैं, ये जो घड़ी है ना, मैं बार बार कहता हूँ, ये आज भी टिक टिक टिक टिक बढ़ती जा रही है। ये आधा सफर पूरा कर चुकी है, यानी आज के इस कार्यक्रम का आधा सफर पूरा हो चुका है। तो मिलाकर ये फोन 73 76 80 40 90 लाइव फोनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद। जी, लाइव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
2: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंके, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है सजीव फन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका। कौन बोल रहा है और कहाँ से?
4: राहुल शर्मा बोल रहे हैं।
0: तो राहुल जी, आप कहाँ से फोन लगाए हो? कहाँ से? हेलो,
4: हाँ
0: सर, हाँ कहाँ से? अब हम सुन नहीं पाए।
4: अरे सर, यहाँ मिला है, गालीपुर में को काटा पड़ता है सोहावत क्षेत्र।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब समझ में आया। असल में मीरपुर काटा तो समझ गए, लेकिन इसके पहले आप जो पता बताए थे वो हमारी जानकारी में नहीं था।
4: सर यही गालीपुर बताए थे, अभी परसों बात हुई थी आपसे।
0: नहीं, हमसे तो नहीं हुई होगी, हमारे किसी और साथी से हुई होगी।
4: जी सर,
0: लेकिन परसों फोन मिलाए थे और फिर मिला दिए, देखिए लग गया कॉल आपका। क्या करते हैं आप?
4: सर हम तो इसमें खेती बाड़ी कर रहे हो, जो काम करते हैं सर।
0: अच्छा, तो इस समय खेत में कौन सी फसल है?
4: सर यही धान लग रहा है अपना।
0: तो बारिश से उसको समस्या होगी कि नहीं होगी?
4: बारिश नहीं हो रही सर, मोटर से चल रहा नहीं, इंजन चलवाते हैं।
0: मतलब बारिश की जरूरत है इस समय।
4: जी सर।
0: तो अभी तो एक कॉलर थे, अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था, उन्होंने तो बता रहे थे कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है।
4: बड़ा लड़का मिला दिया ना अभी।
0: हाँ,
4: तो हमको पकड़ा गया, अपना बात नहीं किया।
0: ओ, मतलब फोन उसने मिलाया और आपको फंसा दिया एक तरह से।
4: जी
0: सही बात है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये भी अच्छा है, इसी बहाने हमारी आपकी बातचीत हो रही है। अरे कोई बात नहीं, आपने मिला दिया, ठीक किया। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे बताइए? हेलो
4: हेलो,
0: हाँ
4: जी सर
0: बताइए।

0: कौन सा? आपकी आवाज बीच बीच में हमें कट जा रही है,
1: नेटवर्क भी कट रहा ना हमारे।
0: हाँ, इसी वजह से हमें क्लियर आवाज आपकी नहीं मिल रही है।
1: जी सर, एक क्रांति वाला सुना दीजिए।
0: क्रांति फिल्म का?
1: जी सर।
0: हाँ, क्रांति फिल्म का कौन सा गाना सुना दें आपको?
1: जिंदगी का जो होना,
0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
1: जी जी सर।
0: अच्छा, आपके पास कोई और है क्या आपको बता रहा है पीछे?
1: जी सर।
0: आपको कोई बातचीत कर रहा है क्या आपके साथ?
1: नहीं सर, हम अकेले यहाँ रोड पे हैं सर, लड़का पकड़ा जो भागी है, नेटवर्क नहीं था ना।
0: अच्छा, हाँ, वो नेटवर्क की समस्या है इसीलिए आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। तो ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: नमस्ते।
0: श्रोताओं, जिंदगी की कड़ी आप मिलाते रहेंगे ना तो इस कार्यक्रम की भी नहीं टूटेगी। मिलाते रहिए फोन 73-76-80-40-90।

0: श्रोताओं एक कॉल आ रही है, इनसे बात करते हैं। हेलो। ओ, इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, दूसरी कॉल लेकिन आ गई। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: सर जगतपाल पांडे बोल रहे हैं सर, नन्हे नगर विद्यालय।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, नवाबगंज से आपका फोन लग गया।
1: जी सर, हम तो सर भक्ति गाना सुनते रहे सर, कोनो गजल जी कोनो फिल्मी, जैसे जय माँ दुर्गा भाई, जय माँ संतोषी गाना सुनाई दिया कोनो भक्ति के।
0: ये तो ठीक है, लेकिन अब गजल तो नहीं, देवी माँ का गीत कोशिश करते हैं आपके लिए।
1: हाँ, जैसे जय माँ दुर्गा का है, लेके पूजा की थाली मन की ज्योति जला ली।
0: लेकिन ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम नहीं है
1: जी।
0: हम कह रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम नहीं है।
1: अच्छा, तो आप कौन सुना दिया सर?
0: अच्छा, मतलब कोई
1: सुना दीजिए, गजल भक्ति गजल हुए।
0: यही तो बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि ये गजल का प्रोग्राम

0: प्रोग्राम नहीं है और भक्ति गीतों का प्रोग्राम नहीं है।
1: सर तो भक्ति पिक्चर मार्ग सुना दीजिए आपको।
0: अच्छा
1: हाँ जी, कोई भक्ति पिक्चर मार्ग सुना दीजिए।
0: तो क्या करते हैं आप वही कॉलेज में ही?
1: हम सर यहाँ चौकीदारी करते हैं नंदन नगर विद्यालय में।
0: तो हमें लगता है आपसे हमारी बात पहले भी हो चुकी है।
1: जी सर, जी जी पहले बैग चाहे सर आप लगा था सर, एक चार तीन महीने पहले फोन लगा था तो आप नहीं थे, दूसरा कोई था।
0: हाँ दूसरा कोई साथी रहा होगा। ये भी सही कह रहे हैं। अब देखते हैं आपकी पसंद का गीत कोई नवरात्र का, जिससे आपको
1: तो सर जिला बस्ती पड़ता है लेकिन यहाँ ड्यूटी करते सर।
0: अच्छा, तो यहाँ ड्यूटी करते हैं और प्रोग्राम सुनने का वक्त मिल जाता है?
1: हाँ जिला बस्ती पड़ता है, पास जैसा गाँव है, यहाँ ड्यूटी करने में।
0: वाह क्या बात है, ठीक है। तो
1: ड्यूटी है सर, रात ड्यूटी इसमें।
0: अच्छा रात की ड्यूटी, तो रात की ड्यूटी पे क्या आपको डर वर नहीं लगता?
1: नहीं सर कोई वो, तो बच्चे लोग आते हैं हॉस्टल है ना, टीचर में हॉस्टल लाते हैं, लड़के लड़के रहते हैं, कुश्ती हाल है, कुश्ती भवन, तमाम पहलवान आते हैं, 150 पहलवान आते हैं।
0: मतलब आप अकेले नहीं है और भी लोग आपके साथ वहाँ रहते हैं?
1: नहीं सर बहुत लोग आते हैं सर यहाँ पर, क्यों गेट पर ड्यूटी देते हैं अपने यहाँ पर, ताला मार देते हैं, अंदर सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर।
0: अच्छा बढ़िया है
1: सर, तनख्वाह कम है लेकिन आराम है सर।
0: अच्छा तो कितने वक्त से कर रहे हैं प्रोग्राम?
1: सर हम तो यहाँ 16 साल हो गए सर ड्यूटी करते हैं।
0: ओहो लंबे वक्त से आप ड्यूटी कर रहे हैं।
1: जी सर जी, नेताजी से जुड़े हुए हैं सर, बस तनख्वाह पाप नहीं सर, क्यों नेताजी से जुड़े हुए हैं।
0: बढ़िया है, अच्छी बात है, किसी से जुड़े रहना भी बड़ी बात होती है। फिलहाल आपके लिए एक माता जी से संबंधित मैंने गीत निकाल लिया है, नवरात से संबंधित नहीं है, ठीक है?
1: हाँ सर, क्यों मैं भक्ति लाइन में रहता हूँ सर, मैं इसे
0: नहीं, ठीक है, आपको कुछ अच्छा सा भक्ति सुनाते हैं, सुनिए।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अध्यक्ष, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष। इनसे एक कॉल आ गई है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपकी कॉल लग गई, बात करिए। हेलो कॉल लग गई है लेकिन श्रोता बात नहीं कर रहे हैं, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी। हेलो लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष। इनसे फोन मिलाते रहिए, नंबर वही है 73-76-80-40-90। कॉल आ गई। हेलो हेलो, इसकी भी आवाज नहीं। श्रोताओं नेटवर्क एरिया में रहिए जिससे हमारी और आपकी बातें हो सकें, क्योंकि ये भी लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आपकी कॉल हम ले रहे हैं लेकिन आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं। कॉल मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए। जी हाँ, बस 15 मिनट के लगभग का समय शेष है, मिलाते रहिए फोन। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन कर रहे हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है? हेलो
1: हेलो,
0: हाँ
1: आप सुहावल से बोल रहे हैं?
0: अरे सुहावल से आज क्या बात है, लगातार कॉल लग रही है।
1: हाँ, लग
0: गई। अपना नाम बताइए।
1: राम किशन।
0: तो क्या करते हैं आप?
1: राज्य मिस्त्री हैं।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनने का समय मिल जाता है?
1: हाँ बराबर सुनते हैं।
0: अच्छा, तो सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है आपको?
1: ये सर हल पसंद वाली,
0: ये वाला जिसमें फोन करके लोग गाने सुनते हैं। अच्छा, इसके बाद और कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है?
1: हम सर इसी को सुनते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, यही आप सुनते ही हैं। तो आज आपकी कॉल पहली बार लगी है कि इसके पहले भी लगी है?
1: नहीं सर, कई बार लगाए, नहीं लगी, अभी भी काफी टाइम से परेशान थे, अभी लग गए।
0: क्या बात है, चलिए बढ़िया हो गया। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज बताइए?
1: खुदा गवाह कर।
0: क्या बात है, बहुत पुराना फिल्म पसंद किया है आपने। देखते हैं ये अपने, तो इसका कौन सा गाना सुनेंगे आप? इसका कौन सा गाना सुनेंगे?
1: ओ, जो जाते हैं मर भी गया तो मैं वापस आएंगे।
0: अब ऐसे तो मैं नहीं जान पाऊंगा आप कौन सा गाना, मतलब कौन सा पसंद कर रहे हैं। ऐसे कुछ और कुछ बता पाए गाने के बोल तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है शायद वाला तो नहीं है, तू मुझे कबूल वाला, वह हमें लगता है शायद यही है।
1: अरे वो जो जाते समय गाते हैं,
0: तू न जा मेरे बादशाह।
1: हाँ
0: यही तो। ठीक है, बढ़िया है, आपसे बात करके अच्छा लगा, और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। नमस्ते। श्रोताओं मिलाते रहिए फोन। जी बस कुछ ही समय नंबर वही है 73-76-80-40-90।

0: लाइव फनी प्रोग्राम। हेलो अयोध्या, कॉलर का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ कॉल लग गई। ओ कॉल डिस्कनेक्ट भी हो गई, दूसरी कॉल भी आ गई है। हेलो हेलो, आज कुछ।
1: हेलो
0: हेलो, जी जी आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाए
1: सर? नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार
1: सर, मैं मिर्कीपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ।
0: जी अपना नाम भी बताएं।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम भी बताइए।
1: सर मेरा नाम हरिश्चंद्र शर्मा है।
0: अच्छा हरिश्चंद्र जी, क्या करते हैं?
1: सर मैं पुलिस में था, रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, सेवा पूरी कर चुके हैं। हेलो हेलो शर्मा जी,
1: बोले सर।
0: हाँ हमें लगता है नेटवर्क की कोई दिक्कत है। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: हेलो
0: जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है? आपको हमारी आवाज मिल रही है
1: सर? भीगी पलके।
0: अच्छा बिल्कुल, यही मैं पूछ रहा था
1: जी। भीगी पलके पिक्चर का नाम है।
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: तो हम देखते हैं आपकी पसंद का गीत। तो आप प्रोग्राम सुनते हैं पूरे? हेलो,
1: आप सर कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं
1: जी। जी
0: इस फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जो भी आप संबंध सुना दे।
0: आवाज बीच बीच में कट रही है जी। फिलहाल आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए
1: जी। थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। श्रोताओं, जब नेटवर्क में हो तो कॉल करिए और आसपास नेटवर्क तलाश लीजिए, कहां से अच्छी बात हो सकती है।

0: शुदा, हमारा आपका भी तो साथ है, बस फोन मिलाते रहिए, क्योंकि लाइव फोन इन प्रोग्राम में जुड़ने के लिए केवल आपको डायल करना है हेलो। ओ देखिए, कॉल इनकी डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: फैजाबाद से बोल रहे हैं सर।
0: अच्छा, अपना नाम भी बताइए।
1: अंगद मिस्त्री।
0: अच्छा अंगद जी, नाम में मिस्त्री है या आप राजगीर हैं भी?
1: हम ट्रक के काम करते हैं, ट्रक बस मैकेनिक हैं।
0: अच्छा, तो समय निकाल लेते हैं प्रोग्राम सुनने का?
1: अरे बहुत मजा आता है सुनने के
0: लिए। तो कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है?
1: सर हम इतना बिजी रहते हैं कि इसी में हमारा हमारे पूरे दिन की थकान उतर जाती है।
0: वाह क्या बात है, तो हमें लगता है इस प्रोग्राम को आप नहीं छोड़ते होंगे, सुनते जरूर होंगे।
1: इस प्रोग्राम को बराबर सुनते हैं।
0: वाह, अच्छा कितने समय से सुनते आ रहे हैं?
1: अरे काफी समय हो गया।
0: फिर भी
1: ये मान के चलिए कि जब से रेडियो है तब से हम सुन रहे हैं।
0: ओहो क्या बात है, तो आपकी उम्र कितनी है?
1: हमारी उम्र 45 साल है सर।
0: हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब आप बहुत समय से सुन रहे हैं। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: रेडियो हम चालू करते थे, पिताजी हमारे बंद करते थे, रात में हम सो जाते थे।
0: आप बहुत समय से सुन रहे हैं इसका मतलब, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: दिल वाले का सुना दीजिए सर आज।
0: दिल वाले का, तो दिल वाले का कौन सा सुना दे?
1: ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था।
0: ऐसी क्या बात है, मतलब सब ठीक ठाक है ना?
1: हाँ सब बिल्कुल ठीक है सर।
0: हाँ मतलब इस तरह का गाना आप, मतलब वही हम सोच रहे हैं।
1: समय से हम सुनते ना, पुराने गानों का जो है ज्यादा हमें वो है।
0: अच्छा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है ना?
1: ऐसी कोई बात
0: हाँ, जीता था जिसके लिए बरता था, मतलब आप ऐसा गाना पसंद कर लिए इसलिए हमको चिंता हुई बस।
1: बहुत जबरदस्त गाना है।
0: अरे वाह ठीक है, तो फिर लिखिए, मतलब आप सुनिए फिर, अब लीजिए जबरदस्त गाना। नमस्ते।

शुदा फिलहाल लाज का हेलो अयोध्या का सफर हुआ पूरा। दीजिए विवेकानंद को इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। हाँ, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आपको बता दें, कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे आज अरविंद कुमार। फिलहाल आज का नमस्कार।

0: दुरुस्त।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फनिन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों

0: पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसंख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH 148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 20 has across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable.